जंग में हाजिर रह चुके थे, और जब इमाम से मुलाकात हुई तो उन्होंने खुद ही एक वाकया बयान किया कि हम जब सफीन के मैदान में जा रहे थे तो इसी सरजमीन से गुजरे थे, यहीं से हम गुजरे थे, और यहाँ पर जो है अमीरुल मोमिनीन ठहरे। जब सफीन से वापस आ रहे, माफ कीजिए, जाते हुए भी कुछ माजरा था, लेकिन जब वापस आ रहे थे जाहिर एक रास्ता वही था, करबला ही से जो है आना था, तो यहाँ पर इमाम ठहरे, और आने के बाद यहाँ पर इमाम ने पेशीन गोई फरमाई कि यहीं पर मेरा फर्जंद हुसैन कत्ल किया जाएगा। अब ये वाकया, ये माजरा जो है वो 24 साल पहले का है, यानी जंग सिफीन जो है वो 24 साल या तकरीबन 23.5 साल पहले हुई थी। तो वो माजरा और भी है, इब्ने अब्बास की रवायत है, जुमले भी इमाम के हैं जो इमाम ने वहां पे जुमले फरमाए थे। अब ये चूंकि बहुत ज्यादा करीबी सहाबी नहीं थे, तो सिर्फ उन्हें इतना मालूम था कि इमाम ने यहाँ पर ठहर के और लोगों को, जो आसपास के लोग थे, उनको फरमाया था कि यहाँ पर मेरा फर्जंद हुसैन कत्ल किया जाएगा। ये वाकया उन्होंने बयान किया। अब ये तारीख में तारीख सही नहीं लिखी कि 2 मुहर्रम थी या 3 मुहर्रम थे, लेकिन करबला पहुंचने के शुरू के दिनों में ये हालात थे। बाद के दिनों में हालात ऐसे हो गए थे कि कोई आकर इमाम हुसैन सलाम से आसानी से नहीं मिल सकता था, लश्कर आ चुके थे, घेर लिया था, और इमाम की तरफ नुसरत आने में रुकावटें थी। उस वक्त जब इन्होंने ये वाकया, इमाम को तो ये मालूम था, इमाम खुद जंगे सफीन में मौजूद थे, इमाम जंगे सफीन में एक तकरीबन 33 साल के जवान थे, जंग करने वाले थे, आगे बढ़ बढ़ के जंग करने वाले थे, ठीक है। इमाम हसन इस्लाम बड़े थे, इमाम हुसैन इस्लाम से तकरीबन 10 महीना, 10 महीने से कुछ ज्यादा बड़े थे सिन में, तो बड़े बड़े बेटे के होते हुए, बड़े भाई के होते हुए, अहले बैत के घर का अदब और एहतराम था कि बड़े के होते हुए छोटे अपने आप को हर मैदान में पीछे ही रखते हैं, हत्ता गुफ्तगू में भी, खुतबे में भी, कलाम में भी, ये हमेशा अदब रहता। अगरचे फासला सिर्फ वही 10.5 महीने से कम का फासला था, यानी 15 रमजान को इमाम हसन मुश्तबा अलैहिस्सलाम पैदा हुए थे, और अगले ही साल, उसके अगले ही साल 3 शाबान को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई थी। तो ये फासला बहुत छोटा था, बहुत मुख्तसर सा फासला था, 10 महीने का फासला। ऐसे ही हुआ कि जैसे तीन भाई ही हों, तो कोई ऐसा मसला नहीं था, लेकिन अहले बैत के घराने का अदब था, एहतराम था। लिहाजा मैदान जंगे सिफीन में जो तारीखी वाकयात लिखे गए हैं उसमें ज्यादा इमाम हसन है मुश्तबा अलैहिस्सलाम का जिक्र है, जिसका अभी आपकी खिदमत में पहले भी इशारा किया गया, और अभी इशारा थोड़ा और भी शायद हो आपकी खिदमत। तो इमाम भी मौजूद थे, 33 साल की उम्र थी वहां पर जब जंगे सफीन में। तो इमाम जब अब्दुल्ला इब्ने अब्बास को बता रहे थे और दूसरे असहाब को बता रहे थे, तो इमाम को भी इस बात की खबर थी, लिहाजा इमाम ने ज्यादा उसकी तरफ तवज्जो नहीं की कि हर समा ने कहा कि मैं भी था, और जंगे सफीन में जब वापस आ रहे थे तो अमीरुल मोमिनीन ने ये मसला बयान किया था। ये उन्होंने वाकया बयान कर दिया, लेकिन इमाम ने उनसे सवाल किया कि ठीक है, छोटा सा सवाल, अब यहाँ पे हम हैं तो ना आना अंता अम अलैना, वो तो 24 साल पहले की बात है, अब बताओ मा आना अंता अम अलैना, अब तुम हमारे साथ हो या हमारे मुकाबिल में, हमारे साथ हो, ये सवाल तो समझ में आता है चूंकि अमीरुल मोमिनीन के साथ थे, लेकिन आप इससे अंदाजा कर लें अजीज, ये थोड़ा बारीक मसला है, आप इससे अंदाजा कर लें कि जो 24 साल पहले अमीरुल मोमिनीन के साथ रहा हो, हालात ने ऐसी करवट बदल ली थी कि मुमकिन है कि वो मुकाबिल के लश्कर में मौजूद, इसीलिए इमाम ने सवाल किया, अभी तो हो यहाँ करबला में, तो कहाँ हो, नानता अमलैना, मेरे साथ हो या मेरे खिलाफ हो। नमूना मैं आपके सामने पहले पेश कर चुका हूँ कि उसी जंगे सिफीन में 24 साल पहले शिम्र भी अमीरुल मोमिनीन के लश्कर में था, लेकिन अब कहाँ है, और सिर्फ है नहीं बल्कि पूरी जंग का एक असली तरीन सबब भी बन रहा है, जंग शुरू करने का, 9 मुहर्रम में उकसाने का, इब्ने ज़ियाद के खत लाने का। और ये इसलिए हम नहीं पढ़ रहे हैं, ये कह रहे हैं कि आप सिर्फ परेशान हो जाएं और ये देखें कि तारीख में एक ऐसा मसला पेश आया, ये इसलिए पढ़ा जा रहा है अजीजों कि जब उस दौर में जब इतनी पेचीदगी नहीं थी
भी लोगों के किरदार ऐसे

से बदल जाया करते थे, तो आज के दौर में किरदार और रूह और फिक्र के बदलने में और भी ज्यादा आसानियां पैदा हो गई, और भी धोखा मुमकिन है, और भी इंसान को गुमराह किया जा सकता है, और भी अगर सादा लोह इंसान है, सिंपल सोच रखने वाला, तो बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छे जवानों को, बहुत ही मुखलिस इंसानों को, मुमकिन है अहले बैत ही के नाम पर जो है उन्हें किसी और रुख की तरफ ले जाया जाए, जो हुसैन इब्न अली का रास्ता ना हो। ये इस तरह के वाकयात किस दौर में इसलिए ज्यादा आपकी खिदमत में पेश किए जा रहे हैं। लिहाजा इमाम ने बाकायदा ये सवाल किया कि माना अंता अलैना, अब बताओ तुम क्या करने वाले हो, मेरे साथ या मेरे साथ नहीं। तो उसने बहुत ही वाजह तौर पर यह जवाब दिया कि ना आपके साथ ना आपके खिलाफ, अल्लाह ला माक वाला आलाई, ना आपके साथ है अभी ना आपके खिलाफ है। क्यों? दलील क्या दी? दलील ये दी कि मेरे घर में हमारे बच्चे हैं और हमें उबैदुल्लाह इब्न ज़ियाद का डर है, अगर हम आपका साथ देंगे और ये तय है कि कर्बला की सरजमीन पे मारे ही जाएंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि मेरे बच्चों को नुकसान ना पहुंचाया जाए इस जुर्म में, माअल्लाह इस जुर्म में कि हुसैन इब्न अली के साथ क्यों दिया, तो मैं तो मारा जाऊंगा, मसला नहीं है, लेकिन मेरे बच्चों को नुकसान न पहुंचाए। दलील कैसी है? ये थोड़ा सोचने के मैं, दलील कैसी है उसकी? मुमकिन है बहुत सारे लोगों का दिल काने हो जाए कि हाँ दलील तो अच्छी दी है, वो अपनी जान देने तक भी तैयार है, लेकिन वो अपने बच्चों की फिक्र में हुसैन इब्न अली के साथ नहीं दे रहा है कि मेरे मरने के बाद, मेरे कत्ल होने के बाद कहीं मेरे बच्चों को इब्न ज़ियाद की तरफ से नुकसान ना पहुंचे। लेकिन अजीजों, ये दलील वहां तक अच्छी होती है जगह जब कोई छोटा सा मामला होता, जब कोई शख्सी मसला होता, जब कोई पर्सनल किसी का मसला होता, जब किसी छोटे छोटे किसी मसले की बात होती। लेकिन जब ये देखा जाए कि एक तरफ हरसमा के अपने बच्चे हैं और एक तरफ जहरा का लाल आया हुआ है, एक तरफ रसूलुल्लाह के फर्जंद है, एक तरफ वक्त का इमाम है, एक तरफ वली खुदा है, एक तरफ हुज्जत खुदा है, तो ऐसे मसले में अपने बच्चों की फिक्र ज्यादा अहम है या रसूलुल्लाह के फर्जंद की फिक्र ज्यादा है? इन बारीक मसाइल में आपको इसलिए मैं ला रहा हूं थोड़ी कभी कभी, क्योंकि बहुत सारे फैसले मुमकिन है आइंदा होने करने पड़े, हम सबको करना पड़े, और अभी बहुत सारे ऐसे फैसले कर रहे हैं लोग, यहीं से दो गिरोह जुदा हो जाता है, दो गिरोह उस जमाने में भी और आज के जमाने में भी। कूफे के लोगों को भी सबसे बड़ी परवाह यह थी कि हुसैन इब्न अली के साथ देंगे तो हम तो मार दिए जाएंगे, लेकिन बच्चों का क्या होगा, बीवी के क्या होगा, घर का क्या होगा। अल्लाह अकबर। अभी जो किरदार कल पेश कर रहे थे तो नहीं पेश कर पाए, अभी अर्ज करेंगे, वहां भी मसला यही था कि आपका आपका तो कत्ल हो जाना अब यकीनी है, ये खुद मसला है कि कहां तक साथ दिया जा सके। हाँ वहां तक साथ दे, हमें मालूम है कि आप हक पे हैं, लेकिन आपके साथ हम वहां तक देंगे कि जब तक आपके जीत जाने का इम्कान हो, और जीतना भी कौन, जो हम तय करें, क्योंकि किसी के कत्ल हो जाना आम लोगों की निगाह में ये जीतना नहीं कहा जाता है ना, आज भी नहीं कहा जाता, शायद समझने लगे हो अब धीरे धीरे। अभी तक लोग यही समझ रहे थे कि फिलिस्तीन में इतने सारे लोग मार दिए गए तो हार ही गए, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द ही देखेंगे कि इतने सारे लोगों की कुर्बानी दे के भी कैसे जीता जाता है, देखेंगे। लबनान में 4,800 से ज्यादा लोग इन चंद महीनों में मार दिए गए, शहीद कर दिए गए, अजीम लोग, तो वो हार गए। हाँ दुनिया मुमकिन यही समझ रही हो कि हार गए, लेकिन ये दुश्मन भी समझ रहा है कि हम इतने लोगों को मार के भी मुसलसल हार रहे हैं, है ना। और इससे भी बड़ा नमूना रहबरे शहीद का है कि जिस दिन से रहबरे शहीद की शहादत हुई, अभी तकरीबन क्या 115 दिन गुजर गए होंगे, भी मैंने आज हिसाब नहीं किया,

लेकिन हर दिन रह रहे शहीद को शहीद करने के बाद दुश्मन को हर हर दिन नई से नई शिकस्त का एहसास करना पड़ा, और ये शिकस्त मुमकिन नहीं थी अगर ये शहादत ना होती। तो कभी कभी जिंदा रहकर कामयाबी मुमकिन है, और कभी कभी उससे भी बड़ी कामयाबी अगर चाहिए है तो जान देकर कामयाबी हासिल की जाती है। और ये जरूरी नहीं कि सिर्फ इस्लाम में हो और इस्लाम की तारीख में हो, और भी जगहों पे ऐसा हुआ है। तो हमारे मुल्क में ऐसा हुआ है कि बाज लोग 23 साल की उम्र में जब इनसे कहा जाता अपने आप को बचाओ, जान बचाओ मसलन, कहा नहीं नहीं इस वक्त मुझे मरना ही मेरे लिए बेहतर है, मारा जाना बेहतर है, फांसी पे चढ़ना बेहतर है। यानी आजादी के जो जंगजू थे, आजादी के लिए जो जंग लड़ रहे थे, आजादी एक मुल्क की आजादी का है मसला होता है। सर इब्न अली सलामुल्लाह ये किसी जमीन की आजादी के लिए जंग नहीं कर रहे थे, ये बशरियत की आजादी के लिए जंग कर रहे थे, ये तारीख इंसानियत की आजादी के लिए जंग कर रहे थे। लेकिन अगर छोटी सी भी आजादी के लिए जंग की जाए तो वो भी मोहतरम है। अगर किसी एक सरजमीन की आजादी के लिए, किसी अफ्रीका के मुल्क के लिए, हमारे हिंदुस्तान के मुल्क के लिए, या किसी और सरजमीन के लिए अगर कुछ लोग इकट्ठा होकर अपनी आजादी के लिए जंग करें तो वो मोहतरम है। तो वो मोहतरम लोग मुमकिन है वो भी ये तय करें कि इस वक्त हमारा जिंदा रहना ज्यादा कामयाबी ला सकता है या हमारा जान दे देना ज्यादा कामयाबी ला सकता है। तो कभी ये फैसला लेना पड़ता है कि इस वक्त हमारी जिंदगी से इतने असरात नहीं होने वाले हैं जितना हमारी जान देने से असरात पैदा होने वाले, ये बड़ा फैसला होता है। अलबत्ता इस फैसले में जब तारीखी नमूने मौजूद होते हैं तो आसान हो जाता है, और शायद बहुत सारे लोगों के लिए तारीख में मजहब व मिल्लत के फर्क के बगैर हुसैन इब्न अली का नमूना है जो हमेशा बाकी रहने वाला है, हमेशा बाकी रहने वाला है। यूं ही नहीं, नेल्सन मंडेला जैसा शख्स या गांधी जैसा शख्स या कोई और इस कदर हुसैन इब्न अली से मुतासिर हो, मजहबी तो कोई रब्त नहीं था, पर अगर उस शख्स को किसी किरदार में वो झलक कुछ नजर आने लगे, वही झलक जो हुसैन इब्न अली ने 26 रजब की रात में फरमाई थी, मिसली ला युबाए मिसला, वो झलक नजर आने लगे, तो जिसको पूरी दुनिया इतना बड़ा लीडर मांगती हो, जो 22-23 सालों तक जिंदान में रहा हो और इस तमाम जिंदान की सख्तियां उठा उठा के अपने मुल्क को आजाद कराया हो कॉलोनियलिज्म से, वो शख्स जब रहबरे शहीद के पास आता है, 86 साल की उम्र में नहीं, अच्छे जब काफी बेहतर शायद 25-25-30-25 साल पहले, तो आके जबकि उसकी उम्र ज्यादा थी, वो पूरी दुनिया में एक बड़े लीडर के तौर पर मशहूर था, तो आके डायरेक्ट यही कह के खिताब करता है, ओ माय लीडर। तो वो उन बुनियादों को देखते हुए, वो वीडियो मौजूद है, क्लिप शायद आप में से बाद लोगों ने देखी होगी, तो हम ये बात अभी नहीं अर्ज कर रहे, हम सिर्फ ये अर्ज कर रहे हैं कि सिर्फ ये नहीं है कि इस्लाम की तारीख में, बल्कि इस्लाम की तारीख के अलावा भी कभी कभी यही तय करना पड़ता है कि इस वक्त मेरी जान बचना ये इतना अहम नहीं है, बल्कि किसी हक के लिए जान दे देना ये ज्यादा कीमती है। समझ रहे हैं? जैसे सुकरात ने ये फैसला किया था कि जान दे देना ज्यादा, यहीं पर अर्ज किया गया ना, मैंने कहीं अर्ज किया है, अगर अर्ज किया यहां पे कर दिया ना, तो चले ठीक। सुकरात ने भी यही फैसला किया था कि नहीं, मुझे जान बचा के निकलना नहीं है, मेरा शागिर्द मुझे बचाने आया, जिंदान से रात में गायब करा देगा, निकल जाएंगे कहीं और पे, कहा नहीं, हमारे गायब हो जाने से जिस हक के लिए हम खड़े हुए हैं उस हक को नुकसान पहुंच जाएगा, मेरी जान बच जाएगी। और उस जमाने में जान बचाना आसान था, कोई ऐसा इंटरपोल नहीं था कि कहीं भी जाओगे तो पकड़े जाओगे, किसी भी सरहद से बाहर बाहर निकल गए बस खत्म हो गया, कहां तक पीछा करेगा कोई, तो कोई ऐसा मुश्किल ऐसी मुश्किल नहीं थी। यूनान कितना बड़ा था, यूनान की सरहद से आसानी से निकल सकते, यूनान में क्या एथेंस में हो, अभी यूनान कितना बड़ा है, शायद और भी बड़ा रहा हो उस जमाने में, मैंने वो तारीख नहीं देखी, हतमन बड़ा रहा होगा। तो उन सरहदों से निकल के कहीं निकल जाना, तुर्की की तरफ आ जाना, तुर्की से और पीछे इधर आ जाना एशिया में, तो वो सब हो सकता था। लेकिन ये कि एक बड़ी जंग थी कि जहां पर बड़े बड़ी तादाद में साहिबान इल्म ने आके ये तय कर दिया था कि सारे इल्म को शक में तब्दील कर दिया जाए, एक तहरीक चली थी, एक मोमेंट चला था कि किसी हकीकत को हकीकत रहने ही न दिया जाए, हर चीज को मशकूक कर दिया जाए। तो वहां पे सुकरात ने जो जंग लड़ी, इल्मी जंग लड़ी, और

की जंगली और हक को हक बाकी रखने की जंगली सिर्फ ये नहीं है कि जो हम यहाँ मिंबर बयान करें, हक इस तारीख में इस दुनिया में बहुत सारा है। तो उस वक्त के लिए जब जंगली तो उन्होंने ये जाना कि इस वक्त रात की तारीकी में शागिर्द की मदद से यूनान की सरहदों से निकलकर अपनी जान बचाने में कितना ज्यादा महफूज नहीं है जितना इस वक्त दिन के उजाले में सबके सामने शहर के प्याले को पी लेने में हक महफूज रहने वाला। ये बड़े फैसले होते हैं और ये बड़े फैसलों को इसीलिए याद रखा जाता है कि हम जैसे छोटे लोग मुमकिन है जब बड़ा फैसला करने का वक्त आए तो ना कर पाए, थक जाए, हार जाए, कूफी बन जाए या कुछ और बन जाए, लेकिन अगर हमारे सामने असीम तारीख के नमूने मौजूद होंगे तो उन्हें देखकर बड़ा फैसला करना आसान हो जाता है। संकरवला की को बाकी रखने का एक राज यह है कि जब बड़े बड़े जालिमों से तुम्हारा सामना होगा तो तुम भी कमजोर पड़ सकते हो, तुम भी कूफी बन सकते हो, तुम भी मदीना और मक्के का किरदार अदा करने के लिए मजबूर हो सकते हो। घर के मारे इब्ने ज़ियाद के लश्कर है, शाम के खौफ है, शाम के लश्कर के खौफ है, तो जब इतना खौफ लाकर बिठाया जाए तो वहां पे करबला को जिंदगी भर बार बार याद करते रहो कि हुसैन इब्ने अली की याद वहां तुम्हें कवी कर देगी, मजबूत कर देगी, तुम्हें हारने नहीं देगी, तुम्हें शिकस्त कबूल नहीं करने देगी। ये रोल मॉडल्स की जरूरत इसीलिए होती है। कुरान इतनी बड़ी किताब, उसमें इतना सारे रोल मॉडल्स क्यों बयान किए गए हैं? क्योंकि कभी तुम्हारे सामने भी फिरौन हो सकता है। जब फिरौन तुम्हारे सामने हो तो तुम्हें क्या करना है? मूसा का किरदार अपनाना। इसीलिए, सिर्फ इसीलिए हम ये समझते हैं यहां कुरान पढ़ेंगे तो बड़ा सवाब हो जाएगा, और जब मूसा का किरदार अपनाना हो तो फिर सामरी का किरदार अपना ले, धोखा दे के निकल जाए या धोखा दे के दूसरों को भी बहका दे, जिनको मूसा तैयार करके लाए हजरत मूसा उन्हें भी धोखा दे दे, एक नया खुदा बना दे। इतना ज्यादा तकरीबन 950 आयतों में बनी इसराइल का जिक्र तरह तरह से बार बार और कहीं ना कहीं हजरत मूसा को कनेक्ट करते हुए इतना जब किया गया है तो इसीलिए किया गया है कि कभी ना कभी तो तुम्हें भी किसी फिरौन का सामना करना होगा, तो वहां पे देखना कि तुम मूसा के किरदार अपना पाते हो या नहीं। कभी ना कभी तो कोई नमरूद तुम्हारे सामने भी आएगा, उस तरह आग नहीं भड़का है लेकिन किसी आग का डर तो बिठाएगा, किसी न किसी मुश्किल में डालने के लिए तुम्हें खौफ तुम्हारे दिलों में बिठाएगा। जो बैठा हुआ है खौफ, अभी जो बुरी तरह से खौफ बिठा दिया गया है, आज के इस खौफ में खुदा की कसम अज़ीज़ो, आज के इस खौफ के माहौल में सिर्फ और सिर्फ याद हुसैन इब्ने अली ही निजात दे सकती है। अल्हम्दुलिल्लाह अब बरादरान वापस आ गए हैं जुलूस से, धीरे धीरे हम भी जहां तक मुमकिन हो सका आखिरी आखिरी वक्त तक गए जुलूस में, बहुत ही शानदार तरीके से अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत ही मुनज्जम, बहुत ही अच्छे पैगाम के साथ अशार अच्छे पढ़े गए, सलीके से आप लोग निकले। और जुलूस का मकसद ही यही होता है कि एक जुलूस के जरिए से जो लोग भी गुजरने वाले हों, जो लोग भी देखने वाले हों, उन तक एक सही मैसेज पहुंच जाए। अगर हम बहुत ज्यादा मैसेज ना भी पहुंचा पाए तो कम से कम जहन में एक सवाल पैदा हो जाए कि ये क्या है, क्यों ऐसा कर रहे हैं, क्यों इस तरह से निकले हैं। और जुलूस तो इस तरह से नहीं होते, और जुलूसों की हालत तो आप देखते हैं किस तरह होती है। तो वो लाजिम है कि ऐसा सलीका हो, ऐसा अदब हो, चेहरे पे ऐसे एक्सप्रेशंस हो, चेहरा ऐसा हो। बाद जुलूसों में जाके शर्म आती है कि हुसैन इब्ने अली के जुलूस लेके इस तरह निकले हो, खाते पीते हंसते खेलते मुस्कुराते, तो वो हुसैन इब्ने अली के जुलूस नहीं। लेकिन माशाल्लाह बहुत ही जज़ाकुमुल्लाह आप सबके लिए, पढ़ने वालों के लिए, जवानों के लिए, बुजुर्गों के लिए, ऐसे ही जुलूस होना चाहिए जो कहीं ना कहीं एक सवाल तो दिल में पैदा कर दे। कोई भी समझदार इंसान जाके सोचने लगे, सोच सोच के कुछ पढ़ने लगे, मुतालिया करने लगे, जब हुसैन हुसैन का बार बार नाम आ रहा है तो हुसैन इब्ने अली के बारे में कुछ सोचने लगे। असल मकसद ये है, जुलूस का सारा फलसफा ही यही है कि जुलूस के जरिए

से हम कोई पैगाम देने जा रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा तारीखी किरदार, इस किरदार को भी जिंदा रखने के लिए बड़ी कुर्बानियां दी गई। अभी आपने कल देखा, खबर सुनी, मैं तो मजलिस पढ़ रहा था रात में, तो मजलिसी के दरमियान में, यानी यहाँ के बाद एक दूसरी मजलिस थी, तो उसी दरमियान में किसी ने बताया

0: कहीं बाहर के लिए पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा कि अभी अभी जो है खबर आई है कि इस तरह से गाड़ियां चढ़ा दी, गाड़ी चढ़ा दी कजाखाने के आप बकीयतुल्लाह कजाखाने पर पड़ोसी मुल्क में, बहुत सारे लोग, कई सारे लोग जख्मी हुए। लेकिन ये असली कर ये इन जुलूसों, इन अजादारियों में सिर्फ आज कुर्बानी नहीं दी जा रही, बहुत कुर्बानी दी गई है। और अगर कोई डर रहा हो कि नहीं नहीं कुछ ऐसा नहीं करना है कि जहां पे कोई नुकसान हो, तो भाई ऐसा जुलूस से क्या फायदा जहां जरा भी कुछ मुश्किल होने का खतरा ही ना हो। और होगा खतरा, जब तक लोग नहीं जानते थे कि हुसैनियत असल में क्या है, तो मुमकिन है वो भी सवाब के लिए और कुछ अपने मरीजों को शफा के लिए आ जाते हो, लेकिन जब जान जाएंगे कि हुसैनियत क्या है तो आपको मुश्किल होने वाली है। और हमें ये तय करना है कि जब मुश्किल होगी तो हम इन जुलूसों को किस तरह निकालेंगे, मुश्किल में पीछे तो नहीं हट जाना है, क्योंकि ये कोई हमारी अपनी रस्म नहीं है। अगर हमारी अपनी रस्म है तो पीछे हट जाओ भाई, कोई फायदा नहीं, मसला नहीं है। लेकिन अगर इसे आप समझते हैं कि जनाबे ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की कायम करदा रस्म है, तो फिर पीछे नहीं हटना है, तो फिर हमें सख्तियां उठानी है तो उठाएंगे, मुश्किलात का सामना करना है तो करेंगे। अभी तो कुर्बानियां नहीं दी गई, बहुत कुर्बानियां लोग दे चुके हैं, बहुत जाने दे चुके हैं, बहुत कुछ लोग खो चुके हैं, लेकिन जिक्र हुसैन इब्ने अली को नहीं रुकने दिया है, जुलूसों को नहीं रुकने दिया है, मजलिसों को नहीं रुकने दिया है। तो क्यों नहीं रुकने दिया है, ये सब क्यों है, क्यों उसके लिए इतनी कुर्बानियां दी जा रही? ये सारी कुर्बानियां ही इसलिए दी जा रही हैं कि जब भी बड़ा फैसला करना हो तो हुसैन इब्न अली तुम्हारे पास सामने मौजूद हो, फैसला करने में मदद कर सके हैं, उस फैसला करने में आपकी मदद कर सके।
1: मोहम्मद
0: जब उन्होंने ये कहा कि घर में बच्चे हैं और मैं आपके बाबा के साथ तो था जंग में, लेकिन अभी जो है हालात, जाहिर उस वक्त शायद जवान रहे हों, भी हालात मुख्तलिफ हैं और घर में बच्चे हैं और इब्ने ज़ियाद हमारे घर को उजाड़ देगा, तो फिर वहां पर फिर इमाम ने ये जुमला फरमाया कि फम वे हैसो ला तरा लना मखसला, फिर यहां से कहीं दूर निकल जा, फम जे यहां से दूर निकल जा, हैसो ला तरा लना मक्तला, यहां तक कि तू मुझे यहां कत्ल होते हुए ना देखे। इमाम किसी को मजबूर नहीं करना चाहिए, चाहिए ही नहीं। अभी वो मिसाल में कल वाली दे रहा हूं, वो वाकया बयान कर रहा हूं, ये पहले जुमला पूरा कर लूं, फायदा ही नहीं है। ऐसी कुर्बानी जो मजबूर होके आए हुसैन इब्न अली के साथ कुर्बानी देने के लिए, वो कभी रोल मॉडल बन ही नहीं सकती, वो कभी नमूना बनने की सलाहियत ही नहीं रखती। तो ऐसे किसी इंसान को इमाम ने अपने लश्कर में रहने ही नहीं दिया कि जो कयामत तक के लिए नमूना बनने के लायक ना हो, नहीं चाहिए। ये बड़ी तारीखों में लिखा हुआ है कि हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह के साथ 600 लोग थे शुरू शुरू में, तो इमाम ने खुद अपने जुमलों से अपने हकायक बयान करते हुए क्या होने वाला है, आइंदा क्या होने वाला है, किस तरह उनके सामने पूरी हकीकत, आइंदा की सारी हकीकत इस तरह बयान कर दी कि यहां पर वही सिर्फ ठहरे कि जिसकी शहादत और जिसका किरदार कयामत तक के लिए नमूना बनने के लायक हो, बाकी नहीं चाहिए। ये अजीब लश्कर है, इसको नहीं चाहिए, इसे तादाद नहीं चाहिए। हमें मजलिसों में सबसे बड़ी, हमारा सबसे बड़ा हम गम होता है कि तबर्रुक कितना बटा, लोग कितने आए, कितने लोग आए, तो अच्छा लोग नहीं आ रहे हैं तो अब चलो ठीक है, खाने के ज्यादा अहतमाम कर देते हैं तो कुछ लोग और आ जाएंगे, चलें ठीक है, अल्लाह कबूल फरमाए, लेकिन खाने के लिए आने वाले कभी हक के लिए खड़े नहीं हो सकते। हक के लिए वही खड़ा होगा जो हुसैन इब्न अली के लिए आए, इतना फर्क तो समझना पड़ेगा। तो हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह को बिल्कुल इसकी परवाह नहीं थी कि हमारी तादाद कितनी ज्यादा हो जाए, उसे बात करना था, पॉलिश करना था। कल जो आपके सामने अर्ज किया, हुसैन इब्न अली जनाबे ज़ैनब से ज्यादा देख रहे थे कि ये कयामत तक क्या बनने वाला है, यजीद नहीं देख रहा था, यजीद का लश्कर नहीं देख रहा था,

0: तुम्हारे साथ नहीं देख रहा था, लेकिन हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह बहुत ही गहराई के साथ देख रहे थे कि ये वाकया जो पेश आ रहा है, ये जो मदीने से निकले हैं, जो मक्के से निकले हैं, ये सफर तय कर रहे हैं, ये जो मक्तल तक पहुंचे हैं, ये जो शहादतें दे रहे हैं, ये जो शब आशूर गुजर रही है, ये जो रोज़े आशूर आ रहा है, ये कयामत तक कैसा नमूना बनने वाला है, किन लोगों के लिए। एक जुमलार्स के रोजी दो, कितने साल से ये सवाल किया जा रहा था, कितने साल से ये इतनी अजादारी क्यों कर रहे हैं, इतना मातम क्यों कर रहे हैं, इतनी मजलिस क्यों कर रहे हैं, मजलिस क्यों की जा रही है, ये सवाल हमेशा होता रहता था ना। आप लोग भी, हम लोग भी जवाब देते थे, लेकिन बहरहाल जबानी जवाब होता था, हाँ उसका ये मकसद है, उसका ये मकसद है, उसका मकसद है। इस साल हम आप सबको जो सैकड़ों साल से, सदियों से एतराज कर रहे थे कि हुसैन इब्न अली का जिक्र क्यों कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, एक ही गिरोह क्यों कर रहा है, आखिर आज पूरी दुनिया में 193 करोड़ मुसलमान हैं तो कुछ ही लोग क्यों कर रहे हैं, तो पूरी तारीख में हम जबानी जवाब देते रहे, समझाते रहे, समझाने वाली बातें लोग कम समझते रहे, लेकिन इस साल हम बता सकते हैं कि इतनी सदियों तक हमने हुसैन इब्न अली का जिक्र क्यों किया था।
1: सही
0: है, अपने अमल से बता सकते हैं, अपनी फत से बता सकते हैं, शियत की उस अजमत से बता सकते हैं जो पिछले 3.5 महीनों में पूरी दुनिया ने देखी है। अब हमें जबान से बताने की जरूरत नहीं है, इन मजलिसों का ये जो जो कुछ भी नजर आ रहा है, जितनी भी कुव्वत और गलबा नजर आ रहा है, उन सब के पीछे इन्हीं मजलिसों का राज था जो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने कायम किया। इसीलिए अज़ादारी थी, इसीलिए जुलूस था, इसीलिए मजलिस था। ठीक है, उसमें हमने कमियां की हैं, गलत चीजें भी शामिल की हैं, कोताहियां की हैं, हक नहीं अदा किया है, लेकिन जिसने जितना किया है उसने उतना नतीजा देखा है। और ये बात हम और बाद जगहों में कहते रहते हैं कि लुबनान के लोग हमसे बहुत कम अज़ादारी करते हैं, ईरान के लोग भी हमसे बहुत कम अज़ादारी करते हैं। तो हमसे इस बात ये मोहल्ला नहीं अंधेरे का, यहाँ तो वही वैसे ही हो रही है, इंशाल्लाह असर भी वैसे ही हो। यहाँ रात में एक मजलिस आप करते हैं तो दो लुबनानी जैसी होती, ईरानी जैसी होती, ईरान में भी ऐसे ही होता है, फिर रात में एक मजलिस हो जाती, कभी कभी सुबह में भी एक मजलिस हो जाती। लेकिन आप लखनऊ में जाके देखें, यूपी के बहुत सारे शहरों में जाके देखें, देहातों में जाके देखें, जी अपना शहर बता रहे हैं, हाँ जहाँ भी आप जाएं तो सुबह से शाम तक, यानी अव्वले सुबह से लेकर 1 बजे रात तक, 2 बजे रात तक, फिर वो 2 महीने तक, फिर कितनी कितनी रातें जगना, तो बहुत ज़्यादा करते हैं, फिर फख्र भी करते हैं कि मैं तो सबसे ज़्यादा करता हूँ। हम सब तालिब इल्म ईरान में जाते थे, कहते ये तो कम करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अज़ादारी करते हैं, हम तो बहुत ज़्यादा अज़ादारी करते हैं, ये तो बस थोड़ा सा अज़ादारी करते हैं। शाम में 8 मुहर्रम तक ऐसे ही होता है, 8 मुहर्रम तक शाम में मस्जिद में या हुसैनिया में, जहाँ हुसैनिया है वहाँ हुसैनिया में, वरना मस्जिदी में लोग इकट्ठा होते हैं और एक अच्छी मजलिस होती है, मुफीद बातें होती हैं। अभी आज जुमे के खुतबे में हमारे एक बुजुर्ग थे, ईरानी थे बुजुर्ग, वो कह रहे थे कि आप लोगों की मजलिसों में बहुत सारी चीज़ें नहीं बयान होती, कुछ अहकाम भी बयान होना चाहिए, कुछ मसाइल भी बयान होना चाहिए। मैंने कहा बिल्कुल आप तैयार, अभी तो यहाँ लोग खुतबा सुनने के लिए तैयार है, अहकाम के लिए धीरे धीरे होगा इंशाअल्लाह ताला, तो मुफीद होती है। लेकिन अजीजों, मजलिसों की कसरत किरदार तय नहीं करती है, मजलिसों की कैफियत किरदार तय करती है और बनाती है। मौजू जो था ना, तरबियत, हुसैनी तरबियत और तरबियत के असरात, तरबियत होगी तो असरात भी होंगे, जब तरबियत ही नहीं होगी तो असरात कहाँ होंगे। ये अगर थोड़े थोड़े असरात देख रहे हैं तो ये तो नाम है हुसैन इब्न अली का सदका है कि किसी भी तरह हम आ जाए तो कुछ ना कुछ असर तो हो ही जाएगा, लिहाजा कुछ ना कुछ तो हमारे बच्चों पर, हमारी नस्लों पर इश्क हुसैन इब्न अली का असर होगा। लेकिन क्या आप वाकई मुतमईन है कि उतना ही असर है जितना होना चाहिए? तो फिर कंपेयर कर ले ना, कंपेयर कर ले, अभी कंपेयर कर ले, ऐसा कर ले। सब आप लोग भी कर ले, ऊपर बैठी हुई हमारी बहनें और माएं भी कर लें, कितनी माएं हैं जो अपने बच्चों, मैंने देखा है, मैंने सिर्फ जिक्र किया बाज लोगों के सामने कि कोई मसला नहीं, अभी चलो शहादत मिल जाएगी, तुम भी किसी शहीद की मां बन जाओगी, तो घबरा गई, कुछ होने वाला नहीं था। भाई जहां 93 मिलियन लोग हैं, 9 करोड़ 30 लाख लोग हैं, वहां एक आपका भी बेटा है, आपकी एक बेटी है, तो देखा कि जैसे चेहरा फक हो गया हो, नहीं है तैयार, बिल्कुल नहीं है। और कहीं ज्यादा मजलिसें करने वाले हो, लेकिन अपने एक बच्चे की कुर्बानी का नाम सुन के लोग घबरा जाते हैं, लेकिन हमने यहां देखा है अभी इन्हीं दिनों में कि एक घर से आठ आठ लोग

हो रहे हैं और बहुत ही आजजी और हम्बलनेस के साथ आगे कहते हैं कि नहीं कुछ नहीं, ये तो कुछ नहीं है, अल्लाह की राह में तो इससे भी ज्यादा हो तो कुर्बान किया जा सकता है। कंपेयर करने से पता चलता है ना, मेरी निगाहों के सामने बार बार वो एक खातून, बुजुर्ग खातून एक परचम लिए आके सबके साथ ऐसे ही रोड पे खड़ी हुई है जैसे हजारों खवातीन हैं, हजारों मर्द हैं जो अभी मुसलसल रहा है, और सर को अपना झुकाए हुए छिपाए जा रही है अपने अपने रदा से अपने चेहरे को, लेकिन किसी ने पहचान लिया कि हाँ ये तो वही खातून है। तो आगे पूछ रहा, हज खानों आप भी आई हुई हैं, आप भी आई हैं? तो बहुत शर्माते हुए कि हाँ जी सब आए हैं तो हम भी आए हैं। उसने पूछ लिया कि आपके घर में कितने लोग शहीद हुए? कहा कि इमाम रजा आठवें इमाम के नाम पे आठ लोग शहीद, आठ लोग। और आठ लोग कहते हुए जैसे शर्म महसूस कर रही है, नहीं कुछ नहीं, ये कोई तारीख के अफसाने नहीं बयान किए जा रहे हैं, ये अभी के किरदार बयान किए जा रहे हैं। और ये सब उसी तरबियत का असर है जो मीरास है हुसैन इब्न अली सलाम अल्लाह अलैहि। ये मौजू इसीलिए रखा गया है अजीजों, हम सब तो ना देख सके लेकिन चंद दिनों में थोड़ा सा देख सकते हैं। तो एक गिरोह ये है कि इतनी सारी कुर्बानियां देने के बाद बिल्कुल डटा हुआ, अभी कल ही धोखा, कल ही ये धमकी दी गई कि ये लोग जो स्विट्जरलैंड आए हैं निगोशिएशन करने के लिए उनको वहीं मार दिया जाएगा, तो उन्हें कौन सी परवाह है मरने, वो तो हमेशा जब शहीद इब्राहिम हाजी जादे से जो पिछले साल मुहर्रम से चंद दिन पहले शहीद किए गए थे 12 जून को, जब उनसे किसी ने आके कहा, जब उनसे किसी ने आके कहा कि इसराइल कह रहा है कि तुम्हें कत्ल कर देंगे, तो मुस्कुरा के कहते हैं मछली को पानी से डराया जाता है क्या, मछली को समंदर से डराया जाता है? तो जो अल्लाह की राह में जिंदगी जीने वाले हैं उनके लिए तो शहादत ऐसे ही है जैसे मछली को उठा के समंदर में डाल दिया गया। यही जुमला था बरजस्ता, यही जुमला गया, मछली को समंदर से डरा रहे। तो किसी इंसान को शहादत समंदर कब नजर आने लगेगी, जब उसके सामने हुसैन इब्न अली की तरबियत का असर होगा, इश्क हुसैन इब्न अली की तरबियत का असर होगा। ऐसे इतने नमूने नजर आए हैं, इतने नमूने नजर आए कि इंसान तो हम लोग तो आगे बढ़ जाएंगे, तारीख मिल गया लेकिन तारीख हर बयान होता रहे। हम कहते हैं ना कि कई हजार साल पहले, 3000 साल पहले हजरत तालूत का किस्सा हुआ था, वहां पे इस तरह से जनाब दाऊद ने किरदार अदा किया, ये अभी अपने हम अभी देख रहे हैं सब कुछ। हम ये ना कहेंगे हाँ ठीक है कुरान पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना वही कुरान वही किरदार थे जिनको पढ़ पढ़ के भी ये किरदार बने, उसी को पढ़ पढ़ के बने। तो एक एक किरदार ये बनता चला गया और मुसलसल बनता जा रहा है जिसके सबसे अजीम नमूने नजर आए। दूसरी तरफ वो किरदार कि नहीं बच्चे हैं, घर है, हम हैं, अच्छा आप फायदा नहीं है, जंग तो कर लेते। अब जुमला जल्दी वो पढ़ दूं, ये तर्जुमा हो गया पुराना जो आज पढ़ने वाला था, नहीं पूरा नहीं, एक जुमला पूरा करते हैं। इमाम ने फरमाया किससे, हर समा से, जो अमीर मोमिनीन के सहाबी थे जो करबला में इमाम से मिले थे, फरमाया कि अब तुम यहां से फमजे निकल जाओ यहां से, हे खो ला तरा लना मक्तला, मुझे कत्ल होते हुए नहीं देखना, वला तस्माउ लना सौता, और मेरी आवाज को ना सुन लेना, मैं तो हुज्जत तमाम करूंगा, मैं तो फरियाद बुलंद करूंगा, मैं तो मौका दूंगा सबको। मैं तो हल मिन मुगीस, हल मिन नासिर, हल मिन मुईन, हल मिन जाब की आवाजें बुलंद करूंगा, ये इस्तगासा मेरा बुलंद होगा। तो ला तस्मा लना सौता, मेरी आवाज को ना सुन लेना, फवल्लाही ना फवल्लदी नफ्सुल हुसैन बियदे, उस जात की कसम की जिसके अख्तियार में हुसैन की जान है, ये खास कसम होती है, उस जात की कसम की जिसके हाथ में हुसैन की जान है, ला यस्मउल यौम वायतन अहदुन फला युईनना इल्ला कब्बहुल्लाहु लिवजही फि जहन्नम। वही जुमला है, थोड़ा लफ्ज बदले हुए कि कोई भी ऐसा नहीं होगा जो हुसैन इब्न अली की फरियाद सुने और उसकी मदद करने ना आए तो अल्लाह उसे सीधे मुंह के बल जहन्नम में डालेगा, मुमकिन नहीं है, नहीं हो पाएगा। तो यह आवाज गूंजने वाली है, एक हुसैन नहीं है।

है लेकिन फर्जंद हुसैन इब्ने अली है, तो उस आवाज का इंतजार करना पड़ेगा हमें। ये मजलिसें भी इसीलिए है कि जब वो आवाज गूंजे, एक और नुसरत की आवाज गूंजे, तो हम जहन्नम में सर के बल अपने आप को जाने की तैयारी में ना हो, बल्कि हुसैन इब्ने अली की आवाज पे लब्बैक कैसे, फर्जंद हुसैन इब्ने अली की आवाज पे लब्बैक कैसे। अब कल का जुमला जल्दी मैं पूरा कर देता हूँ। कल का वाकया जो था, जो आपको नहीं पढ़ पाया था, यब नाहौर, इमाम ने जुमला फरमाया, बड़ी बात है लेकिन सारी बातें छोड़ते हुए, यब नाहौर फाइन मिस्र कुम हाद ही गतबू एलैया, वो कूफे की तरफ से आ रहा था। अब आ गया आप लोग, कल का वाकया, उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी वो कूफे ही की तरफ से आ रहा था। देखा इमाम ने उधर खैमा लगा हुआ है, इमाम ने हज्जाज इब्न मसरूक जौफी को भेजा जो उसी कबीले का था, आशना था, जाके तुम बुला के लाओ। जैसे बुलाने के लिए गया तो उसने कहा, देखते ही कहा, जाके कहा कि हुसैन इब्न अली तुम्हें बुला रहे हैं, मिलना चाहते हैं, फरजंद रसूलुल्लाह। तो खुदा की कसम मैं तो कूफे से निकला ही इसलिए था कि कहीं मेरा सामना हुसैन का सामना ना हो जाए। मैंने सुना था कि हुसैन इब्न अली कूफा आ रहे हैं, तो मैं तो निकले ही यहां था, मुझे क्या पता था कि यहाँ पे हो जाएगा सामना। तो नहीं, मुझे, मैं नहीं जाऊंगा, मुझे नहीं ले जाओ। वही मसला था जो आपके सामने ज़ुहैर क़ैन का भी मसला बयान किया था ना, लेकिन यही फर्क हो जाएगा। ज़ुहैर क़ैन तक भी इमाम गए थे, वो शख्स वापस आ गया और हज्जाज इब्न मसरूक जौफी, और कहा कि नहीं आ रहा है। उसने कहा कि हम नहीं आएंगे, हम ऐसे हालत में इमाम से मुलाकात नहीं कर सकते, कूफे के लोग तैयार हैं। तो इमाम खुद चले गए, इमाम उठकर खुद उसके पास चले गए, घोड़े पे सवार होकर इमाम खुद उसके खैमे तक चले गए। और वहां पे जाके इमाम ने फरमाया कि तुम्हारे शहर के लोगों ने मुझे खत लिखा था, इन मुश्तमेउन आला नुसरती, वो सब मेरी नुसरत के लिए तैयार थे, यही खत लिखा था। 12,002 बोरियां भरी, बोरी समझ रहे हैं, दो बोरियां खतूस से भरी हुई थी जो इमाम ने आशूर के दिन पेश किया। वह यकूम वो दूनी वह यकातिल अदूवी, उन्होंने वादा किया था कि मेरे साथ खड़े होंगे और मेरे दुश्मन से जंग करेंगे। इन्नहुम सालूनिल कुदूम अलैहिम फकदिम, तो उन्होंने ये कहा था कि आप मेरे पास आए तो मैं इधर आ गया हूँ, फकदिम तो मैं अब आ गया हूँ, लस्तु अदरिल कौम अला मा ज़ामू। फिर वो क्या सोच रहे हैं, उनकी हालत अभी क्या है, لأنهم قد عانوا على قتل ابن عمي مسلم ابن عقيل وصيته, लेकिन ये तो बदल गए, ये तो मेरे भाई के कत्ल में खड़े हो गए, खामोश हो गए, बैठ गए, छिप गए, मदद नहीं की। वजमऊ वला इब्ने मरजान उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद मुबाइन यजीद इब्ने मुआविया, और ये सब के सब तो माविया यजीद उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के पास जाके इकट्ठा हो गए। उबैदुल्लाह इब्ने ज़ियाद के जरिए से जाके यजीद इब्ने माविया की बैत करने लगे, मुस्लिम की बैत को छोड़कर, मुस्लिम ने अकील के जरिए से जो हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह की बैत की थी उसे छोड़कर, उसे तोड़कर जाके बैत, ये इमाम फरमा रहे हैं, वो अंत यब्न अल हुर, और ए हुर के फर्जंद, ये दूसरा हुर है, उबैदुल्ला नाम है जिसके बाप का नाम भी हुर था, अर्ज कर चुका हूं, वो अंत यब्न अल हुर फालम इन अल्लाह अज्ज वजल मुआखिदुका बिमा कसबता व असलफ्ता मिन अज़्ज़ुनूब मिन अल अय्याम अल खालिया, पिछले दिनों में तूने बड़े गुनाह किए हुए हैं, इन सब का मुआखजा होने वाला है। तो ऐसा नहीं कहा, उसे इमाम ने आमादा भी किया कि भाई तेरे गुनाह बहुत बड़े बड़े हैं, पिछले दिनों में बड़े गुनाह हैं। अब किसी को गुनाह तो नहीं बयान करना यहाँ पे मिंबर पर, लेकिन इतना कम से कम बता सकते हैं कि पिछले दिनों में यही उबैदुल्लाह इब्न हुर्र जौफी 24 साल पहले अमीरुल मोमिनीन के मुकाबले में शाम के लश्कर में जंग कर रहा था। इतना बड़ा गुनाह, इतना बड़ा गुनाह है, लेकिन हुसैन इब्न अली को पहचानता था, बहादुर भी बहुत था, जंगजू भी बहुत था, तो बाप के दुश्मन को भी हुसैन इब्न अली मौका दे रहे हैं कि मैं तुझे अभी निजात का रास्ता बता रहा हूं, जो कि हुसैन इब्न अली को किसी से कीना नहीं है। इमाम हमारी तरह से नहीं कि मेरे बाप का दुश्मन है तो मैं तो उसको जहन्नमी में भेजना चाहूंगा, नहीं भाई, दुश्मन था, अगर अब निजात चाहता है तो अभी भी उसे मौका दिया जा रहा है। तो इमाम ने ये जुमला फरमाया कि जो तूने गुनाह किए हैं अय्यामे खालिया में, वो सब के सब अल्लाह उसका मुआफ़िदा करेगा। वा अना अदू कफी वक्ती हादा इला तौबतिन तख्सलु बिहा मा अलैका मिन अज़्ज़ुनूब, मैं तुझे इस वक्त मौका दे देता हूं एक ऐसी तौबा का कि जो सारे गुनाहों को धुल दे, इतने बड़े गुनाह को भी धुल दे।
24 साल पहले के गुनाह को बदल दे। इमाम ये फरमा रहे हैं।

एक ऐसी तौबा का आप ताज्जुब ना करेंगे, ये कैसे हो सकता है कोई अमीर अलमोमिनीन के मुकाबले में हो? अमीर अलमोमिनीन के मुकाबले में तो कोई 24 साल पहले था, हुर तो अभी आया था इमाम के मुकाबले में, अभी आके लजाम फरस पे हाथ डाल रहा था, अभी तलवारें लेके आया था, लेकिन इमाम ने मौका नहीं दिया उसे, मौका भी दिया, उसने तौबा भी कर ली, और तौबा भी कर ली तो क्या हो गया? अल्लाह अकबर। मुझे तो नहीं लगता कि कोई हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैहि की ज्यारत करने जाए, अगरचे हुर का रोजा वहां से कुछ तकरीबन 20-22 किलोमीटर दूर है, लेकिन कोई ये नहीं कहता कि नहीं हुसैन इब्न अली की ज्यारत कर ली, हुर की ज्यारत करने क्या जाए, हर एक पहुंचता है। इस तरह उसकी तौबा कबूल हुई, इस तरह अजमत मिली, इस तरह मकाम हासिल हुआ, इस तरह शरफ मिला, इस तरह इज्जत मिली, इस तरह हुसैन इब्न अली ने अपने सीने से लगाया। ये तो कल का मुजरिम है, ये तो 10 दिन पहले का मुजरिम है। तो जब 10 दिन के पहले के मुजरिम को हुसैन इब्न अली इतना अपने सीने से लगा के इतना बड़ा दर्जा दे सकते हैं कि ठीक है तुम मेरे अब्बास से पहले जाके शहीद हो जाओ, मेरे अली अकबर से पहले जाओ शहीद हो जाओ, मेरे बनी हाशिम से पहले जाके ये दर्जा हासिल कर लो, ये मौका देते हैं। हुसैन इब्न अली है, फर्जंद रसूलुल्लाह है। हम अपने अपने जहनों से और अपने अखलाकी सोच के जरिए से हुसैन इब्न अली को नहीं समझे, हाँ हुसैन इब्न अली के जरिए से अपने आप को चाहें तो बेहतर कर सकते हैं, तब्दील कर सकते हैं, अपने अखलाकियात को तब्दील कर सकते हैं। फिर इमाम ने क्या फरमाया, ये तौबा का तुझे मौका दिया जाए, वादउ के इला नुसरत अहलल बैत, मैं तुझे दावत देता हूं कि तुम हम अहले बैत की नुसरत करो। फैन औतीन हक्कना हमिदना अल्लाह अला ज़ालिका व क़बिलना, अगर मेरा हक दे दिया गया, लोग नुसरत को आ गए, और वो हक जो अमीर अलमोमिनीन का हक था, वो हक जो गदीर में ऐलान किया गया था, अगर वो मुझे दे दिया गया तो अल्लाह की हमद करेंगे। वाइन मोनायना हक्कना रुकिबना बिज़ुल्म व रुकिबना बिज़ुल्म, और अगर मेरा हक रोक दिया गया, मुझे कत्ल कर दिया गया, मेरे ऊपर जुल्म किया गया, तो कुंत मिन अवानी अला तलबिल हक, तो कम से कम तू हक तलब करने वालों में मेरा मददगार तो शुमार हो जाएगा। इससे बड़ी क्या चाहिए भाई, इससे बड़ी सनद क्या चाहिए है कि हक के तलब करने में हुसैन इब्न अली का कोई मददगार बन जाए। ये मौका दिया इमाम ने उस शख्स को जो अमीर उलमोमिन का भी मुजरिम रह चुका था, उसे इमाम मौका दे रहे हैं। बहुत सारी सोचें अपनी बदले यहां पर अजीजों इन जुमलों को सुन के। उसके बाद इमाम ने फरमाया यबनल हुर ना जे ना क्या ले, हाँ माफ कीजिए, उसने जैसे ही इमाम ने ये जुमला कहा, उसने अब ये चंद जुमले सुने, वक्त ज्यादा नहीं रहा अजीजो, उसने कहा कि ए फर्जंद रसूलुल्लाह, ए फर्जंद रसूलुल्लाह, खुदा की कसम अगर कूफे में आपके मददगार होते तो मैं आपकी मदद जरूर करता। ये बारीक मसाइल है थोड़ा, अगर कूफे में आपके मददगार होते तो मैं आपके हमराह जरूर चलता, और मैं आपके दुश्मन के मुकाबले में सख्त जंग लड़ता, लेकिन आपके चाहने वाले कूफे में बनी उमैया की शमशीर के मुकाबले में डर गए हैं, छिप गए हैं, और मैं आपको कसम देता हूं, उसने जुमला कहा कि मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि मुझसे अपनी नुसरत ना चाहें। अल्लाह हू अकबर। यानी इमाम ने बता दिया जुर्म कितने हैं, नहीं नहीं आप, मैं आपको अल्लाह की कसम देता हूं कि आप मुझसे ये ना चाहें, अपनी मदद ना चाहें, लेकिन हाँ मेरे पास जो कुछ भी है मैं आपको देने को तैयार हूं। तो ये यहां से आपने वाकया सुना हुआ है क्या, किलो आप लीजिए, मेरा घोड़ा ले लीजिए, और ये घोड़ा इतना तेज रफ्तार है कि आज तक कोई मेरा मेरा पीछा नहीं कर पाया, और मैंने जिसका भी पीछा किया इस घोड़े से पकड़ लिया उसको, किसी को नहीं छोड़ा, और मैं अपनी तलवार देता हूँ। और ये बात मैं पहले कहीं बयान कर चुका हूँ, अभी 2 दिन पहले भी एक मजलिस में अर्ज किया शायद, कि एक मुसाफिर की सबसे ज्यादा कीमती चीज, अरब के सहराओं के मुसाफिर की सबसे ज्यादा कीमती चीज उसका घोड़ा है और उसकी तलवार है, उसके सोने चांदी से ज्यादा, उसके माल और दौलत से ज्यादा, उसकी प्रॉपर्टी से ज्यादा उसका घोड़ा और उसकी तलवार, क्योंकि इस घोड़े ही के जरिए से सहराओं को पार कर सकता है वरना मर जाएगा, तलवार ही के जरिए से अपना दिफा कर सकता है वरना कोई हमला कर देगा तब भी मर जाएगा।

हर प्रॉपर्टी हर कीमती चीज से ज्यादा कीमती उसका घोड़ा है और उसकी तलवार है, और वो शख्स इस हद तक है कि इमाम को अपना घोड़ा भी दे रहा है और अपनी तलवार भी दे रहा है, लेकिन खुद इमाम के साथ आने को तैयार नहीं। क्यों तैयार नहीं है? इसलिए कि मुझे मालूम है कि आप मार दिए जाएंगे, तो ऐसे लश्कर में जाने के क्या फायदा जहां पे मार दिए जाए? जिंदा रहते तो ठीक था, आप बचते तो आपकी मदद हम करते। अल्लाह अकबर, सुनता है ना, कि जिनके जीतने की उम्मीद थी उनको जाके मदद करेंगे, उसके साथ खड़े हो जाएंगे, लेकिन उन्हें मालूम नहीं था कि नहीं, दुनिया की बड़ी ताकतें जीतने वाली नहीं है, मजबूत के साथ खड़े हो जाएंगे, कमजोर के साथ नहीं खड़े होंगे। ये तो मारे जाएंगे, ये तो खत्म कर दिए जाएंगे, ये तो चंद दिनों में सब खात्मा हो जाएगा, तो कमजोर के साथ क्यों खड़े हों? मजबूत के साथ खड़े होंगे तो उसका कुछ फायदा होगा। लेकिन चूंकि फर्जंद रसूलुल्लाह है, ठीक है, आपका एहतराम इतना ज्यादा है कि ये घोड़ा ले लें और ये तलवार ले लें। जल्दी ये जुमला सुने, वक्त तमाम हो रहा है। वहां पे इमाम ने फरमाया, यबन अलहुर मा जेना के अले फरस के अल सैफिक, मैं तेरे घोड़े के लिए तो यहां नहीं आया। इमाम आए थे ना अपने खेमे से, इस खेमे तक आए थे। उसने इमाम को अपनी मसरत पे बिठाया, खुद किनारे बैठ गया, कहा कि आपका दाढ़ी आपकी बहुत स्याह है, आपने खिजाब लगाया है कि फितरी तौर नेचुरल तौर पे है? तो कहा मेरी उम्र ज्यादा हो गई है, मैंने खिजाब लगाया, लेकिन इन बातों को छोड़ो, तुम बताओ कि तुम्हारे गुनाह ज्यादा है, क्या करना चाहते हो, चलोगे साथ या नहीं? तो वहां पे उसने कहा, इमाम ने फरमाया कि माँ जय ना के लिए फरस क्या वसई फिका, मैं तेरे घोड़े के लिए तेरी तलवार के लिए नहीं आया हूं। इमाम को जरूरत थी, इमाम जंग में जा रहे थे, इमाम ने ऊंट किराए पे लिए हुए थे, लंबी मुद्दत से सफर में निकले हुए थे, लेकिन इमाम ने मना कर दिया। इन आतना क्या लिनस अल के नुसरा, मैं तेरे पास आया हूं ताकि तू मेरे साथ चले, मेरी मदद करने के लिए, इमामत की मदद करने के लिए, जानता है तू। फइन कुंता कद बखलता अलैना बिनफ्सिका फला हाजत लनी लना फी शैय मिन मालिका वला अकुन बिल्लजी तखस्तु मुदल्लीन अदुदा। ये कुरान की सूरह कहफ की आयत से इमाम ने इस्तेफादा किया कि मुझे तेरे माल की जरूरत नहीं है, तेरे घोड़े की जरूरत नहीं है, और मैं कभी भी गुमराहों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बना सकता। अल्लाह अकबर, ये बहुत ही तारीखी जुमला है, मैं यहीं पे तमाम कर दूंगा। आगे भी कुछ जुमले हैं कि मैं कभी, कुरान की आयत पढ़ी इमाम ने, कुरान की आयत से ही जुमला लिया, सूरह कहफ की आयत से, मा कुन तो आयत यह है, मा कुन तो मुत्तखदल मुदिल्लीन अजुदा, हम गुमराहों को अपना कुव्वत बाजू नहीं बनाते। गुमराह बन के हुसैन का कुव्वत बाजू नहीं बन सकता, ना सन 60 हिजरी में कोई बन सकता था, ये माजरा 60 हिजरी का है, अभी अभी चांद नहीं निकला था, अभी हुसैन इब्न अली सलामुल्लाह अलैह कर्बला नहीं पहुंचे थे, अभी रास्ते में पहले की मंजिलों में थे। तो ना सन 60 हिजरी में कोई हुसैन इब्न अली का नासिर बन सकता है गुमराहियों के साथ, कि मेरा घोड़ा ले ले, मेरी तलवार ले ले, मेरा पैसा ले ले, मेरी दौलत ले ले, मेरा तबर्रुक ले ले, मेरा चंदा ले ले, ना मेरी आवाज ले ले, मेरी खताबत ले ले, मेरी शायरी ले ले, मेरा जहन ले ले, ये सब कुछ ले ले, मैं आपकी मदद करूंगा, लेकिन आपके साथ नहीं आना है, आपके रास्ते पर नहीं आना है, आपके साथ हक के लिए खड़ा नहीं होना है। मदद करेंगे हम, आपकी मदद करेंगे, किससे करेंगे? अपनी सबसे ज्यादा कीमती चीज से मदद करेंगे। तो आज भी हुसैन इब्न अली का जवाब यही आएगा कि अगर गुमराही के साथ तुम मदद करना चाहते हो तो हमें तुम्हारा तबर्रुक नहीं चाहिए, तुम्हारा अज़ाखाना नहीं चाहिए, तुम्हारी खिताबत नहीं चाहिए, तुम्हारी शायरी नहीं चाहिए, तुम्हारी मजलिस महफिल नहीं चाहिए। अगर राह हुसैन इब्न अली पे आना है तो बगैर घोड़े के आ जाओ, बगैर तलवार के आ जाओ, सिर्फ तुम आ जाओ, मैं सारे गुनाह माफ करा दूंगी। ये जो आप सुनते हैं ना कि माँ गुनाह माफ हो जाएंगे, गुनाह माफ हो जाएंगे, एक आंसू रोगे गुनाह माफ हो जाएंगे, वो सब के सब यही पलटता है कि एक आंसू अगर राह हुसैन इब्न अली पे लाते तो सारे गुनाह माफ है, अभी माफ है, अभी माफ है। ये नहीं कि मरने के बाद अल्लाह माफ कर देगा, अगर एक आंसू इश्क हुसैन इब्न अली में इस इरादे से आए कि आज हम सारे रास्ते छोड़ते हैं, आज से राह हुसैन इब्न अली है, तो अभी माफ है, अभी सारे गुनाह माफ है, इसी लम्हे माफ है। मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, इतनी सारी रवायतों और हदीसों की बुनियाद पर कह रहा हूं। और अगर नहीं, अगर नहीं

तो शायद अपने अली को, अपने 13 बरस के बच्चे को तो मक्तल में भेजना पड़ेगा, फिर नहीं कोई रास्ता, फिर अपने 6 महीने के बच्चे को ले जाना पड़ेगा, फिर तो मक्तल सजेगा। हम नहीं आए, तुम नहीं आए, उबैदुल्लाह इब्ने हुर नहीं आए, फरजदक नहीं आए, फिर अम्मा नहीं आए, तो नहीं आए, लेकिन अब्बास तो आएंगे, अली अकबर तो चलेंगे, हबीब ने मदाहिर भी तो आएंगे, मुस्लिम ने वसदा भी आएंगे। वो ये नहीं देखेंगे कि मेरी उम्र तो 91 साल की हो गई है, 91 साल के बूढ़ा इंसान जाके क्या करेगा। हुसैन इब्ने अली को बूढ़े और जवान का मसला नहीं है, हक के लिए खड़ा कौन है, कहाँ तक आ सकता है, तो आएंगे, तो वो सब शहादतें देंगे। मक्तल में जाकर जवान सिपाहियों का लाशा उठाना आसान है, लेकिन किसी 91 साल के बूढ़े के जनाजे पे जाना, किसी 75-80 साल के भाई दोस्त के जनाजे पे जाना, किसी 6 महीने के बच्चे को उठा के लाना, किसी 13 बरस के ऐसे भतीजे को जिसे दिल से हुसैन इब्न अली ने अपने बच्चों से ज्यादा चाहा था, मैं कसम खा के ये कह सकता हूं अजीजों, अपने बच्चों से ज्यादा चाहता। हमें और आपको शायद ये बात समझ में ना आए, लेकिन जो इमामत के घराने को जानते हैं, जो अहले बैत के घराने को जानते हैं, वो ये भी जानते हैं कि जब 10 साल बच्चे, 10 साल पहले ये छोटे छोटे बच्चे यतीम हो गए थे, तो यतीमों के साथ किस तरह मोहब्बत की जाती है। मेरे भाई के यतीम थे, 3 साल उम्र थी जनाबे कासिम की, अब्दुल्ला शायद चंद महीने के थे या इमाम की शहादत के बाद पैदा हुए, हसन मुसन्ना बड़े हो चुके थे थोड़ा, लेकिन फिर भी बहरहाल बचपना ही था। हमारे पास तो हदीसें मौजूद है ना कि देखो, अगर तुम्हें अपने बच्चों से बहुत प्यार हो रहा हो तो किसी यतीम के सामने अपने बच्चे को नहीं चूमना, किसी यतीम के सामने उसे प्यार नहीं करना। ये 2 दिन पहले मैं एक क्लिप सुन रहा था, यही जो भी निगोशिएटर है, कालीबाफ जो पार्लियामेंट के स्पीकर भी हैं, कह रहे थे कि जब इराक ईरान की जंग हो रही थी, मेरा छोटा भाई, उसकी उम्र 18 साल की थी, तो मैं सिपह सालार था, लश्कर जा रहा था जंग करने, तो मेरा भाई अजीब निगाहों से मुझे देख रहा था कि जाते जाते एक मरतबा भाई के गले तो लग जाऊं, लेकिन मैं उसे गले नहीं लगा सकता था, क्योंकि पूरा लश्कर था, पूरे लश्कर के सामने मैं अपने भाई को गले लगाऊं तो ये बिल्कुल ठीक नहीं था। ये किरदार कहीं ऐसे वैसे नहीं आते, ये किरदार लिए गए हैं अजीजों। मैंने गले नहीं लगाया। फिर चंद घंटे बाद मुझे खबर दी गई कि फला जगह पे मेरा भाई शहीद हो गया, सारे लश्कर के लोग भी मारे गए, सब शहीद हो गए। तो बस मुझे बड़ी हसरत हुई कि काश कि मैंने अपने भाई को गले लगा लिया होता, लेकिन नहीं, उसूलों का मसला है, उसूलों का मसला है कि जब इतने सारे जवान हो तो मैं अलग से अपने भाई को गले क्यों लगाऊं, या तो सबको गले लगाऊं, तो जंग के मैदान में इतनी इतना वक्त नहीं हुआ करता। तो फिर वहां पे पहुंचे, वहां पे और लोग भी पहुंच गए थे, अभी मैं साहब में आ रहा हूँ, थोड़ा 1 मिनट यहाँ पे ले लेता हूँ। तो वो बयान कर रहे, जब वहां पहुंचे तो बहुत लाशें थी, बहुत सारे लोग थे, और भी घर के लोग आ गए थे। मैं रास्ते पर यही सोचता जा रहा था कि जिंदगी में तो गले नहीं लगा पाया, तो चलो अब उसको सीने से लगाएंगे। लेकिन जब वहां पहुंचे तो माएं भी थी, जवान भी थे, बाप भी आए हुए थे, और उनके भी लाशें लाए जा रहे थे, और कुछ के तो लाश ही नहीं आई थी, तो मेरे भाई का कुछ हिस्सा मिल गया था। तो मेरा बहुत दिल चाहा कि अब पढ़ के गले लगा ले, तो लेकिन नहीं, मैंने नहीं लगाया, छोड़ दिया, नहीं लगाया, क्योंकि यहां कुछ माएं बैठी जिनके बच्चे मिले ही नहीं, बिखर गए, उनके लाशें बिखर गए, अब उनके सामने मैं अपने भाई को गले लगाऊं, भाई की लाश को, तो उन्हें क्या एहसास होगा। तो ये तो मैं नमूना बयान कर रहा हूं, ये तो छोटे गुलामों का नमूना है। हुसैन इब्न अली जानते हैं कि यतीमों के साथ जिंदगी कैसे गुजारी जाती। तो जब अली अकबर हुआ करते थे, हुसैन इब्न अली के बच्चे और इमाम हसन के बच्चे आ गए, तो अपने बच्चों की तरफ देखते नहीं थे, ये मेरे भैया की निशानी, ये मेरे भैया के यतीम है। और इसीलिए आशूर के दिन हुसैन इब्न अली कभी भी इतना नहीं रोए, किसी के लिए इतना नहीं रोए। ये सारा मक्तल लिखता है कि जब जनाबे कासिम जाने लगे, ऐसे गले से लगाया और इतना रोते रहे, रोते रहे, रोते रहे, सिर चचा नहीं रोता, भतीजा भी जानता है।

मैं नीचे जॉब से कितनी हिम्मत करता हूँ, यतीम है, यतीम है, और ये अहले बैत का घराना है। अली अकबर को ऐसे गले लगा के नहीं रहा अली इब्ने अली, ये रिहा नहीं किया, लेकिन जनाब कासिम को देर तक, यहां तक कि रश की कैफियत तारी हो रही, भैया भैया की निशानी है, मेरे भैया की निशानी। उधर मक्तल में जब जाने लगे, आखिर आखिर में हुसैन इब्ने अली रुखसत करते रहे, गले लगा के भी आंखों से रुखसत करते रहे, आखिरी मंजिल तक देखते रहे। उधर दुश्मन का लश्कर देख रहा था, हबीब इब्ने मुस्लिम कहता है कि एक बच्चा ऐसा जैसे जब खेमे से निकला तो ऐसा लगा जैसे चांद का टुकड़ा चला आ रहा हो। मेरे एक साथी है मसायब में कहा करते थे कि जब दुश्मन की निगाह में कोई चांद का टुकड़ा था तो वो माँ की निगाह में क्या होगा, दुश्मन की निगाह में चांद के टुकड़े जैसा था, वो जैनब की निगाह में क्या रहा हो। और बस ये भी वही रावी बयान करता है कि मुझे याद है इतनी तेजी से घोड़े पे सवार हुए, रकाबें छोटी थी, पैर नहीं पहुंच रहा था, 13 बरस की उम्र थी, किसी तरह से अपने आप को बैठाया, और जल्दी इतनी थी कि मुझे ये भी याद है कि अपने बाएं पैर का तस्मा नहीं बांध पाए थे, नालायन के तस्मे को नहीं बांधा था। मुझे नहीं मालूम, ये मेरी अपनी सोच है, कि मक्तल में जाने की जल्दी इतनी थी या डर ये था कि बड़ी मुश्किल से तो इजाजत मिली है, कहीं फूफी ना भैया चचा से तो इजाजत मिल गई है, कहीं मेरी फूफी ना इजाजत मिली है तो किसी तरह जल्दी से मक्तल को चले जाए। पूरा मसायब में नहीं पढ़ता हूँ जो, लेकिन जाके जंग की, जाके जंग करने से पहले किस तरह जंग कर रहे थे, आवा इन तुम फिरूनी फअनब्नुल हसन, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते, जाहिर है कि 13 बरस के बच्चे को पूरा लश्कर तो नहीं पहचानेगा, सब नहीं पहचानेंगे, लेकिन बता रहे तुम्हें याद है मेरा बाबा तो जंगे सिफीन में किस तरह जंग लड़ रहा था, कल बता चुके ना परसों इमाम हसन सलाम की जंग का अंदाज क्या था, तो ये जानते थे, पूरे कूफे का लश्कर जानता था, पूरे शाम के लोग जानते थे कि इमाम हसन की जंग क्या थी। तो फरमा इन तुन के रूनी फअनब्नुल हसन, अगर तुम मुझे नहीं पहचानते तो जान लो मैं हसन के बेटा हूँ, फितुन नबीयुल मुस्तफा अल मोतमन, मैं रसूलुल्लाह का नवासा हूँ, जो बाइस अमन था, जो मुस्तफा था, जो अल्लाह का मुंतखब था, मैं उसका नवासा हूँ, हाजा हुसैन गलसीर मोतबर, ये मेरा चचा हुसैन है, इसे गिरफ्तार किया हुआ, अपनी प्यास की परवाह नहीं है, अपनी भूख की परवाह नहीं है, अपनी मां की परवाह नहीं है, निगाह हुसैन इब्ने अली पे है, हाजा हुसैन उनकल असीर मुर्तहन, ये मेरे चचा हुसैन को तुमने इस तरह से गिरफ्तार किया है, बैना उनासिन ला सकौ सौबल मदन, कि लोगों के दरमियान में मेरा चचा इस तरह है कि मुसलसल प्यासा है, पता है ना 7 मुहर्रम से पानी बंद हो गया था, तो हुसैन इब्ने अली प्यासे ही थे, बच्चों को एहसास था, जब तक मशीदे में थोड़ा थोड़ा पानी था तो बच्चों को पानी पिलाया जा रहा था, उस पानी को हुसैन नहीं पी रहे थे, जनाब ज़ैनब नहीं पी रही थी, अबुल फजल अब्बास नहीं पी रहे थे, ये बचे हुए पानी को जब तक बच्चे पी सके उन्हीं को पिलाए, तो इन बच्चों को मालूम है कि मेरा चचा कब से कैसा है, मेरी बुबी कब से कैसी है, इसे तुमने गिरफ्तार किया, ये करके जंग करते रहे करते रहे करते रहे, जंग के मंजरे आप सुनते हैं अजीजो, लेकिन बस आखिर में जब चारों तरफ से घेर कर तलवारें मार मार कर जनाब कासिम को से जमीन पर गिराने की कोशिश की गई, बहुत देर तक जंग करने के बाद, और एक मलून आगे बढ़ा कि सरोतल में जुदाई करें, तो मुस्तफा में यही जुमला और किसी भी शहीद के लिए नहीं है, सिर्फ और सिर्फ जनाब कासिम के लिए, जितनी तेजी से हुसैन आगे बढ़े किसी के लिए, किसी के लिए हुसैन इस रफ्तार से आगे नहीं बढ़े, किस तरह अपने भतीजे के लिए आगे बढ़े, बढ़ के आगे हमला किया, उस मलून वो मलून पीछे हटा, उसने मदद के लिए लश्कर बुलाया, लश्कर भी आ गया, तो अभी तो अब्बास भी थे, अभी तो अली अकबर भी थे, अभी तो बनी हाशिम के और भी अफराद थे, इसी दरमियान में एक बच्चा अगर उसके ऊपर से घोड़ों के टाप गुजरते थे तो आवाज देता था, या अम्मा या अम्मा, मेरे चचा, अरे मेरे चचा,
फिर यार।

मेरे आवाज बदल गई। इस तरह सीने से लगाया, अभी थोड़ी देर पहले भी सीने से लगाए थे, लेकिन दोनों के हाथ एक दूसरे के गले में थे, लेकिन अब जब शायद निकले तो नहीं जल्दी सीने से लगाया तो पैर जमीन में खड़े रहा था, हाथ जमीन की तरफ लटके हुए थे, उस ऐन सीने से लगा थे, मुस्तल की तरफ देख रहे थे। आखिर माँ के सामने जाना है, सामने सैयद तो मैं उसे

0: यार पानी पी के रोता था बोल रहे हो?
1: क्या हम सफर में नहीं है?
2: तुम्हारा बस यही काम है।

0: मैं सोच भी नहीं सकता था कि हम इतनी आसानी से यहां तक जान बचाकर पहुंच जाएं।
1: अहमद का दिमाग भी खूब काम करता है, लगता है कि मुद्दतों अमरयास के साथ काम किया है।
2: नस्बत उस फासिक से ना दो, मेरा खून खौल जाता है।
3: अच्छा,
4: रशीद ने क्या नाम बताया था उस शख्स का, उस मारने वाले का?
0: बरक।
4: हाँ, बरक ने बताया था कि ख्वारिज ने हमारे आस को मार डाला।
2: मैं नहीं समझता, वो बहुत मक्कार है। दुनिया में किसी माँ ने ऐसा बेटा पैदा नहीं किया होगा, न जाने कितनी बार अपनी जान बचा चुका है। बहादुरी से नहीं बल्कि मकर व फरेब से।
4: पता है सिफिन में जुल्फ़िकार अली की जद में आ गया था? जानते हो जान के डर से क्या किया था? नंगा हो गया था, अली ने शर्मगाह की वजह से उसको छोड़ दिया।
2: यहाँ तुमको शर्मगाह की वजह से माफ किया। उठो अब चलते हैं।
0: नहीं ठहरो, सवार आ रहा है।
2: किधर से?
0: इस तरफ से।

0: रुक जाओ।
1: कहां से आ रहे हो?
2: कूफे से।
3: कूफे से? मगर जा कहां रहे हो?
2: अमीरुल मोमिनीन माविया के पास।
3: अमीरुल मोमिनीन, फिर तो कोई खास खबर लेके जा रहे हो।
2: तुम लोग मुझसे क्या चाहते हो?
1: डरो नहीं, हमारा कोई गलत इरादा नहीं है।
3: जानते हो, जिस तेजी से तुम सफर कर रहे हो, आधे दिन में दमिश्क पहुंच जाओगे। हम तुम्हारी मुश्किलात को कम करना चाहते हैं।

0: रास्ता छोड़ो वरना जान लो कि तुम्हारा वास्ता अमीरुल मोमिनीन के सिपाहियों से पड़ा है।
1: हमने तो कोई बुरी बात नहीं कही। तुम वो पैगाम हमको दे दो और कूफे पलट जाओ, हम उसे अमीर तक पहुंचा देंगे।
0: मुझसे क्या चाहते हो?
1: हमें उस पैगाम के बारे में मालूम करना है।
0: नहीं बता सकता, दूर हट जाओ।
1: अभी बताओगे?
0: मुझे छोड़ो, मुझसे क्या चाहते हो? अच्छा ठहरो ठहरो, बताता हूँ।
1: तूने वो पैगाम कहाँ छुपा रखा है?
2: उधर देखो, सवार आ रहे हैं।
3: हमें यहां से निकल जाना चाहिए।
4: आई! आई! आई! आई! आई!
0: देखो इनको पकड़ो, ये अमीरुल मोमिनीन के दुश्मन हैं जो भाग रहे हैं।

0: ये हमारे आज के फौजी लगते हैं।
1: सच कह रहे हो, मिस्रियों का लिबास पहने हैं।
2: हिंदा के बेटे की क्या आरजू है, पूरी जमीन पर हुकूमत कायम करना चाहता है।
0: लगता है इस बार वो अली के कत्लों को बहाना बना के लोगों का खून बहाना चाहता है।
1: मैं समझता हूँ जितना जल्दी मुमकिन हो वो सब लोगों को उसकी तरफ खींचना चाहता है।
0: कोई बड़ा फितना उठने वाला है, इसकी खबर इब्ने अब्बास को देना बहुत जरूरी है। जल्दी चलो, वक्त कम है।

0: रुको,
1: क्यों रुक गए हो? क्या सोच रहे हो? लगता है हमारे आस के नाम से कोई नया बहाना दिमाग में आ गया है। मजाक मत करो।
0: बेहतर है कि हम में से सिर्फ 2 आदमी कूफे जाएं और एक आदमी यहीं रुक के ताज़ा खबरें मालूम करे और इस रास्ते पे आने जाने वालों पे नज़र भी रखे। वैसे तो हम लोग एक दूसरे से रابطہ रखेंगे, इस बारे में तुम लोग क्या कहते हो?
1: मैं समझता हूँ खबर ले जाने के लिए 2 आदमी काफी हैं।
2: नहीं, एक आदमी काफी है। तुम लोग यहीं रहो, मैं कूफे जाके खबर पहुंचाता हूँ।
0: तुम क्यों जाओगे?
3: अहमद,
0: तुम चुप रहो।
2: मैं अपने वालिद के साथ आज से 4 साल पहले सरजमीन ईरान से मौला अली से मुलाकात के लिए निकला, लेकिन उन तक न पहुंच सका।
0: हमारा इससे क्या रब है?
3: अहमद,
0: तुम चुप रहो।
2: रास्ते में मेरे बाप का इंतकाल हो गया। डाकुओं ने हमारे काफिले पर हमला कर दिया और मुझे असीर कर लिया।
0: हमने तो तुम्हें कैद नहीं किया, तुम चुप रहो।
2: मुझे गुलाम बनाकर बेच दिया। मैं फरार कर गया। मैं दोबारा असीर हुआ और अब मैं उस वक्त पहुंचा हूं कि जब अली मुर्तजा दुनिया में नहीं है। मैं उनकी ज्यारत से महरूम हो गया, लेकिन अभी तक उनकी ज्यारत का शौक मेरे दिल में वैसे ही जोश मार रहा है।
0: हम भी तुम्हारी तरह ज़ारत के मुश्ताक।
2: अब तुम मुझे इजाजत दो ताकि मैं जल्दी से कूफे पहुंच सकूं। अगरचे मैं मौला अली की ज्यारत से महरूम हो गया हूं, लेकिन कम से कम इमाम हसन अलैहि सलाम की ज्यारत कर सकूं।
0: मैं इस बात की इजाजत नहीं देता।
3: अहमद,
0: तुम चुप रहो। क्यों तुम जाओगे? क्या हम और साले उनके चाहने वालों में से नहीं हैं? हम भी उनकी ज्यारत करना चाहते हैं।
4: तो तुम भी चलो।
0: कब? हम तो अभी जाएंगे।
3: अहमद,
0: मैं खुद जा रहा हूं, तुम घोड़े से उतरो। जाओ जल्दी कूफे जाओ।
5: अच्छा, मैं जाऊं?
0: हाँ जाओ।
6: खुदा हाफिज़।
7: खुदा हाफिज़।
0: फिर से धोखा खा गए ना?
2: तुम बिल्कुल अमराज जैसे लग रहे हो। चलो,
0: हर दोबारा मेरे जाल में फंसोगे तो बताऊंगा।
2: नहीं फंसूंगा।

0: सलोन सर।
1: बताओ तुम किसका पैगाम माफिया तक ले जा रहे हो?
2: तो खुदा की कसम मुझे मजबूर ना करें, मैं नहीं बता सकता।
1: कहता है नहीं बता सकता, ठीक है जाओ दफा हो जाओ। जरा ठहरो, अगर मैं चाहता तो सारी बात तुम्हारी जबान से उगलवा सकता था, लेकिन मैं नहीं चाहता, इसलिए कि माविया मुझे हर बात खुद ही बता देगा। तुम्हारे पैगाम की क्या हैसियत, वो तो मुझे यहां तक बता देगा कि बैतुल खला कितनी दफा गया। जाओ जाकर माविया से कह दो कि अमरयास आ चुका है, बिल्कुल सही और सालिम, ना उसे खवारिज मार सकते हैं और ना ही उसे अली की ज़ुल्फ़िकार। जाकर कह देना कि अमरयास ने कहा है कि जब तक तुम सब की नमाज मैयत न पढ़ा ले उस वक्त तक दुनिया से नहीं जाएगा। जाओ दफा हो जाओ। चलो चलें।

0: الدرع عبد الله.
1: سلام.
0: سلام عليكم قليل.
2: إنا بتاعه. भाई, इनमें से इब्न अब्बास कौन है?
3: कोई नहीं, मेरे साथ आओ।
0: कैस तुम बांटते ना, अच्छी बात है, करीब हो जाओ। अब मैं सबके नाम पुकारूंगा। इस्माइल इब्न हदी, ये लो तुम्हारा खत, जाओ। काजिम इब्न अब्दुल्ला, ये लो जाओ। राशिद इब्ने औस, ये तुम्हारा नामा और इब्ने अब्बास का पैगाम दे देना।
4: सलाम अलैक।
0: अलैकुम सलाम। अगर मुझसे कुछ काम है तो बताओ।
4: मैं उबैदुल्लाह इब्ने अब्बास के लिए पैगाम लाया हूँ।
0: उबैदुल्लाह मैं खुद हूँ।
4: मैं शाम से हारिस का कासिद बन के आया हूँ।
0: हारिस?
4: हारिस ने आपके नाम पैगाम भेजा है।
0: हाँ, हारिस का क्या हाल है? एक मुद्दत से उन्हें नहीं देखा है।
4: ठीक नहीं है, मौला अली के फिराक में रोते रहते हैं।
0: सब रो रहे हैं और वो सबसे ज्यादा, इसमें कोई शक नहीं। वो अली के बावफा दोस्तों में से हैं, उन्हें इश्क अली था।
4: इसी तरह उनकी औलाद भी आशिक अली है।
0: तुमने कहा पैगाम लाए हो?
4: इजाजत दीजिए, मैं तन्हाई में आपको बताऊंगा।
0: आओ मेरे साथ। ये लो तुम्हारा, आओ।
5: अमीर, अमरास ने मुझसे कहा है कि आपको बता दूं कि उबैदुल्लाह के बाद कैस इब्न साद ने भी हसन इब्न अली की बैत कर ली है।
2: या अमीर, अली ने उसको इराकी लश्कर का सिपहसालार बनाया था।
5: उसने कहा, यह भी अर्ज कर दूं कि कैस ने नारा लगा के कहा कि दुश्मन ने किताब खुदा और सुन्नत रसूल और मुनाफिकीन से जंग के लिए आपकी बैत करता हूँ, मगर हसन इब्न अली ने कहा किताब खुदा और सुन्नत रसूल की पैरवी काफी है और हर चीज इन दो में मौजूद है। इसके बाद कैस ने गर्म जोशी से बैत कर ली।
0: अमर से कहो इसके बाद वो मुझे लिखा करे।
5: अमीर डरता है कहीं किसी के हाथ ना लग जाए।
0: वो मुझे लिखा करे।
5: इताअत। अम्र ने कहा, ये भी बता दूं कि बहुत से गुरुओं ने अबा मोहम्मद की बैत में जल्दी की है, यहाँ तक कि वो लोग भी जो अली के दुश्मन थे।
0: खवारिज?
5: हाँ, खवारिज और बुजुर्गान गुरु की शक्ल में हसन इब्न अली के पास आए। वो सब शाम के साथ जंग चाहते थे। और फिर अम्र आस ने शिम अशअस और इब्न उमैर के साथ मुलाकात की और इनको हसन इब्न अली की बैत से रोका, मगर वो नहीं माने और कहा हमारी हसन इब्न अली की बैत के लिए सिर्फ एक शर्त थी और वो शर्त ये थी कि शाम के साथ जंग की जाए।
4: शाम के साथ जंग? और हसन इब्न अली ने कबूल किया?
5: और अम्र आस ने कहा, यह भी बता दूं कि फिर हसन इब्न अली ने इनसे कहा, नहीं बल्कि मुकम्मल इताअत और पैरवी होनी चाहिए, चाहे जंग हो कि अमन। और हां एक और बात, और वो ये कि दमिश्क पहुंचने से पहले बादर जोहर तीन लोगों ने मुझ पर हमला किया ताकि इस पैगाम के बारे में जान सकें जो मैं ला रहा था।
0: तो बताया तुमने?
5: नहीं अमीर, अगर वो मेरे बदन के टुकड़े टुकड़े भी कर देते तो

0: अभी मैं जबान नहीं खोलता। और हाँ, एक और पैगाम। अम्रयास ने कहा आपको ये भी बता दूं कि
1: अम्ब्रयास को देखा कहाँ?
0: उसके आदमी मुझे उसके पास ले गए थे। वो शाम के रास्ते में है, बहुत जल्द यहाँ पहुँचने वाला है।
1: अम्ब्रयास, ए मक्कार और बेदीन, लोमड़ी सिफत, फिर से जान बचा ले गया। कैसे अच्छे वक्त पे आ रहा है, ऐसा वक्त कि मैं कभी उसका इतना जरूरतमंद नहीं था। हाँ, कहा पैगाम लाए हो?
0: हाँ अमीर, उसने कहा कि आपको बता दूं कि जब तक आप सबको अपने हाथों से कब्रों में दफन ना कर दूं, इस दुनिया से नहीं जाऊंगा।
2: अमीर अल-मोमिनीन इमाम अली अलैहिस्सलाम की शहादत के बाद आपकी वसीयत के मुताबिक आपके फर्जंद अर्जुमन हसन इब्न अली ने उमूर मुस्लिमीन की बागडोर संभाली। इमाम ने मसनद खिलाफत को उस वक्त संभाला कि इससे पहले कोई इन हालात से दोचार नहीं हुआ था, इसलिए कि आलम इस्लाम को हुकूमत शाम की जानिब से बहुत बड़ा ख़तरा लाहक था, जिसकी हुकूमत की बुनियाद झूठ, जुल्म और मक्कारी पर उस्तवार थी। हुकूमत शाम को इस्तेहकाम मिल चुका था और उसका फितना व फसाद हर जगह फैल रहा था। ज़ईफ़ ईमान, सियाह दिल और मुर्दा ज़मीर लोग और दीन व अकीदे में कमज़ोर अफराद उसके धोखे में आकर उसके गुरोह में दाखिल हो रहे थे। झूठ और फसाद का मरकज वसीतर और कवी से कवीतर हो रहा था। बहरहाल, जिस दिन कूफे ने इमाम हसन अलैहिस्सलाम के हाथों बैअत की, वहाँ मौजूद तमाम लोगों में इत्तेफाक राय पाया गया, जिसकी मिसाल इससे पहले नज़र नहीं आती। वो मिंबरे खिलाफत जो अपने मौलाओ आका के दुनिया से रहलत हो जाने पर गमजदा था, अब वो खुश नज़र आ रहा था, इसलिए कि अपनी आगोश में अंबिया की विरासत के मजहर को देख रहा था। उस जमाने में हसन इब्ने अली अलैहिस्सलाम से ज़्यादा कोई आबिद व जाहिद नज़र नहीं आता था जिसमें तमाम नेक खसलतें जमा हों। यही वजह है कि फ़कत उन्हीं की शख्सियत थी जिन पर मुख्तलिफ आरा और नज़रियात रखने वाले अपनी रज़ा व रग़बत से तस्लीम हुए और क़यादत की तमाम सिफ़ात आप में बदरजे अतम मौजूद थीं। बहुत से अफराद खुदपरस्ती और मफाद परस्ती में इस हद तक आगे बढ़ गए थे कि ये उनके अकीदे का हिस्सा बन चुकी थी, और इमाम हसन अलैहिस्सलाम, जिनका अखलाक पैगंबर के आदात व अतवार और सिफात की याद ताज़ा करता था, ये अफराद उनकी बैत करके अपने घनौने मकासद को हासिल करना चाहते थे। लेकिन हकीकत यह है कि उन्होंने इमाम के अखलाक और नेक आदतों को समझा ही नहीं था।
1: देखो क्या फौज है, क्या जाहो हशम है।
3: यही तो वो फौज है जिसने अफवाज मिस्र को गारत कर दिया।
4: खबर आई है कि मिस्र को गारत कर दिया है।
5: फिर से ये मक्कार बुढ़ा अपने इलाके में दिखाई देने लगा। मैं तो सोच रहा था कि फिर कभी इस बुढ़े को ना देखूंगा। चलो

0: मुझे मालूम है तुम मुझे अमीरुल मोमिनीन कह के अपने दिल में हंस रहे होंगे।
1: सच बताओ पिसर है मुज़फ़्फ़रान, क्या तुम नहीं हंस रहे थे?
0: ऐ लोमड़ी सिफत, मेरी आरजू थी कि खवारिज की एक तलवार से तुम अपने अजदाद से जा मिलते।
1: ताज्जुब है, मेरी भी तुम्हारे लिए बिल्कुल यही आरजू थी।

0: पिसर है अबू सुफियान, सब कुछ ठीक है?
1: हाँ ठीक है।
0: यजीद, तुम्हारी शायरी कैसी चल रही है?
2: आजकल मैं शिकार कर रहा हूँ।
0: अच्छा, तो तुमने शिकार शुरू कर दिया है?

0: अलबत्ता शिकार और शायरी में भी अजीब रब्ता पाया जाता है। शिकार की खाल को शायर लिखने के लिए इस्तेमाल करता है और उसके गोश्त से हम जैसे फकीरों का पेट भरता
1: हर जैसे मक्कार से ताज्जुब है कि मेरे बेटे का मजाक ना उड़ाओ। कल को अगर वो मेरी जगह आ जाए तो तुम्हें जल्लाद के हवाले कर देगा।
0: नहीं, मैं बिल्कुल परेशान नहीं हूं, इसलिए कि मैं इस नौजवान शायर में हुक्मरानी के कोई आसार नहीं देखता।
1: तेरे मुंह में खाक हो बदबख्त।
0: मैं मुतमईन हूं कि तुम भी ऐसा ही सोचते हो।
1: अजीब है। बताओ उस हमलावर की वार से तुम कैसे बच गए?
0: बिल्कुल वैसे ही जैसे तुम बचे हो।

0: अब कुछ देर आराम कर लो और फिर दरबार आ जाना, मुझे तुम्हारी सख्त जरूरत है।
1: तुमको हमेशा मेरी जरूरत रहेगी।
2: कहाँ है वो? आप बैठे हो, अभी आता है।
3: शेमर, अमर और हजार तुमसे मिलने आए हैं।
0: कहाँ?
3: उधर साय में बैठे हैं।
0: क्या कहते हैं? हाँ, कैसे आना?
2: तुमसे कुछ बात करनी है।
0: बताओ, मैं सुन रहा हूँ।
2: तुमने हसन इब्ने अली की बयात से मुतालिक शर्तें सुन ली, जंग और गैर जंग में पैरवी, क्या ख्याल है तुम्हारा?
0: उस शर्त पे कि हसन इब्ने अली माविया से जंग करे, बस।
2: हसन के हाथ बयात? लेकिन तुमने तो उनके बाप से जंग की है।
0: हमने माविया से भी जंग की है, हसन न अली है और न माविया जैसे।
2: धोखा ना दो शेमर, हसन वही है जो अली थे, उनसे तुम्हारी दुश्मनी उनके बाप की दुश्मनी से कम नहीं है।
0: हमारी मुआविया से दुश्मनी उससे 100 गुना ज्यादा है।
2: जानता हूँ तुम्हारी मुआविया के साथ दुश्मनी है, लेकिन मुआविया के पास दौलत के अलावा सरदारी की भी ताकत है।
1: इराक वाले मुआविया की सरदारी को नहीं मानेंगे।
2: वो माने या न माने, मुआविया तख्त सल्तनत पर है और बाकी रहेगा।
1: शायद वो शाम में हो न कि इराक में।
2: उसकी सरदारी शाम, यमन, मिस्र और जजीरे तक है। अशस
0: नहीं सुना, अशस ने क्या कहा? माविया उस वक्त यहाँ कदम रख सकता है कि जब हम यहाँ ना हो।
2: वो दिन ज्यादा दूर नहीं है।
0: बताता हूँ, माविया के कुत्तों,
2: मेहमानों का कत्ल। शेमर, हम यहाँ मशवरे के लिए आए हैं, ना झगड़ा करने के लिए। हम पर तलवार उठा रहे हो?
0: आ जाओ शेमर।
1: सुनो अम्र, बनु उमैया को इराक की सरदारी नसीब नहीं होगी, यहाँ तक के वो अली के शियों को भी अपने साथ मिला ले।
2: तुमसे कोई बात नहीं करनी आम्र, चलो चलते हैं।
4: हज्जार, मेरी बात सुनो।
2: नहीं, तुम सुनो। ये तुम ही थे कि सिफीन में खुफिया तौर पर मुआविया के हाथों बयात की, और जब कुरान नेज़ों पर उठाया गया तो लोगों को फर्जंद अबू तालिब के खिलाफ भड़काया। ये सच है, तुम ही लोगों ने तलवार इब्ने मुलजिम के हाथों में दी। खुदा की कसम, अगर तुम धोखेबाजी करोगे तो हम तुम्हारे साथ वही करेंगे जो कसाब ऊँटों के साथ करते हैं। अब जाओ और इस अहमक के कान में कह दो कि कजरवी इख्तियार ना करें।
0: तुम मेरी बात सुनो, मैं 10,000 बहादुर जंगजू और इनसे भी खूंखार अफराद को अपने झंडे तले जमा करूंगा, और फिर हम सब हसन इब्ने अली के साथ मिलके तुम्हें और हिंदा की औलाद को नीस्त नाबूद कर डालेंगे। आगे।
5: चला।

0: चलो घर चलते हैं।
1: हमें अबू सुफियान के बेटे को खत लिखना चाहिए, लिखना चाहिए कि अगर तख्त व ताज चाहिए तो हाथ पे हाथ रख के ना बैठे।
0: चलो चलते हैं।

0: हमें होशियार रहना चाहिए।
1: उधर सुनो क्या कह रहे हैं।
0: सुनो जमात, शाम से खबर आई है कि माविया लश्कर जमा कर रहा है और फितना बरपा करने का कस्त रखता है, और ये भी खबर है कि अमरयास मिस्री सिपाहियों समेत उससे मिल गया है। तुम लोग अबा मोहम्मद के कासिद अपने कबीले के सरदारों तक ये खबर पहुंचा दो, और साथ में ये हसन इब्ने अली के खत ले जाएं और कहना फर्जंदे रसूल खुदा की तरफ अपने हाथ बढ़ाएं। जाओ, खुदा हाफिज। अब जाएं।
2: चलो चलते हैं।

0: सुनो शिमर, मुआविया ने लश्कर तैयार कर लिया है और अमरास भी उससे मिल गया है, और हसनिद ने अली ने भी अपने कासिद हर जगह रवाना कर दिए हैं, और वो भी जंग की तैयारी के लिए फौज जमा कर रहे हैं।
1: चलो अच्छा है, अब मोहम्मद ने जंग की तैयारी शुरू कर दी है। सुनो शिमर, अमरियाज जिंदा है और माविया से मिल गया है।
0: लगता है वो अहमक भी अपनी मामूरियत अंजाम नहीं दे पाया।
1: अच्छा है, मैंने भी अहद किया है कि सुफियान और आस के बेटों को मैं अपने इन्हीं हाथों से दो टुकड़े कर दूं। अगर वक्त आ गया तो मैं अली की तरह उसकी शर्मगाह को देख के शर्माऊंगा नहीं, चाहे वो हजारों कुरान नैजों पे लाए और उसके तमाम अजदाद मेरे सामने नंगे होके नाचे। खुदा की कसम मैं सबकी गर्दनें उड़ा दूंगा।
2: मुझे इस बात पर तअज्जुब है कि जब किसी को अमरे आस के बारे में खबर नहीं है तो अबा मोहम्मद कैसे और इतनी जल्दी सबसे पहले शाम के हालात से बाखबर हो गए
0: और फौरन अपने नुमाइंदों को कूफे के तरफ भेज दिया।
1: अच्छा है, ये जवान मुझे पसंद है। मैं पहले से कहता था कि ये न अली है और न माविया जैसा इसका साथ दिया जा सकता है।

0: दीगर अफराद हुकूमत और तमाम लोगों से नहीं कर सकता। मसलन जब मैं खुद फिक्र करता हूँ कि ये सुमैया का बेटा दरियाओ फ़ारस का हाकिम मुझ पर कौन सी फजीलत रखता है जो नेमत अर्जी से फैजियाब हो और मैं ना हो सकूं, खुदा की कसम खून खोल जाता है। और इसी दलील की बिना पर अमीर से तवक्को रखता हूँ कि मुसीबत के वक्त मुझे भी मुरीद अनायत करार दे, ताकि इसकी वजह से दुनियावी नियामतों से भी फ़ायदा उठा सकूं और उसकी इताअत से उखरवी फवायद भी हासिल कर सकूं।
1: खूब, अब तुम बताओ आम्र, तुम तो मालदार और सर्वतमंद हो, मिस्र की हुक्मरानी भी रखते हो, बताओ तुम्हारी क्या तवक्को है?
2: मुझे कोई तवक्को नहीं, कुछ नहीं। क्या करूं, फितरतन मजबूर हूं कि बिना उजरत के कोई काम ही नहीं करता।
1: बगैर उजरत के तो ये जो तुम्हारे पास है वो मेरा दिया नहीं है, हमारा साथ देना और हम दिल रहना, क्या ये तुम्हारे हम ख्याली की उजरत नहीं है?
2: नहीं, हमने एक दूसरे की मदद की और एक दूसरे का भरपूर साथ दिया। उस्मान की खिलाफत को मुतजलजल किया और अली के खिलाफ परचम बगावत बुलंद किया, और सिफीन में भी हमें खातिर खा नताइज हासिल हुए। इसके बाद माल गनीमत हमने आपस में तकसीम किया तो तुम्हें शाम की हुकूमत मिली, मुझे मिस्र की। अगरचे ये तकसीम आदलाना न थी, मगर मैं फिर भी खामोश रहा, कोई शिकायत नहीं, राजी हूं। मगर अब मसला कुछ और है, तमाम ममालिक इस्लामी की बात है, मुझे भी अपने हिस्से के बारे में सोचने का कुछ हक तो है।
1: मक्कार,
2: आज अमीर की तबीयत कुछ ठीक नहीं है, बाद में बात करेंगे।
1: ठहरो, तुम्हारे इतनी जल्दी शाम पहुंच जाने ने मुझे हैरत सदा कर दिया। मैं ये समझा कि हमारी पुरानी दोस्ती तुम्हें यहां खींच लाई, लेकिन अब देखता हूं कि तुम आइंदा की गनीमतों का हिस्सा तलब करने आए हो। याद रखो कि इस बार कोई गनीमत का चक्कर नहीं है, तुम्हारा गोश्त और खून मेरे वजूद से है। हुकूमत मिस्र कोई माल गनीमत नहीं था, वो तो एक बदबूदार गोश्त का टुकड़ा था जिसको मैंने एक बूढ़े कुत्ते के सामने डाल दिया जो कभी मेरे हाथ चाटने से सैर नहीं होता था। तुम एक रजील माँ के बेटे हो, अभी चेहरे से सफर की गर्दो खाक नहीं उतरी, लगे मेरे मुशाविर और सरदारों को शोरिश पर उकसाने, जमीन और आसमान को एक कर रहे हो ताकि शायद उसके दरमियान तुम्हें कुछ मिल जाए, लेकिन गलत सोचा है, इस दफा तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। और अब तुम लोग मेरे अजीज मुशाविर और सरदारों, बेहतर है कि तुम लोग भी कान खोल कर सुन लो। मैं मुआविया इब्न अबी सुफियान हूं और मुझे तुम में से किसी की जरूरत नहीं है। तुम लोग वो नहीं जो मेरी मुश्किल हल करो, बल्कि मैं हूं कि जिसने तुमको यतीम और बिन बाप का समझकर पाल रहा हूं। खूब मेरे पिसरम, हकीकतन कब तुमने सरदारी की, किस सरजमीन पर कब्जा किया और कौन सी जंग तुमने फतह कर ली? क्या वो तुम नहीं थे जो जंग जमल में बिल्कुल एक बेवा औरत की तरह मालिक अश्तर की तलवार से डर कर दुम दबा कर भागे और मेरे कदमों में पनाह ली? नहीं पिसरमू, नहीं, तुम सरदार नहीं हो, बल्कि दर बदर की ठोकरें खाने वाले एक ऐसे मनहूस कदम हो कि जहां पर भी पड़ जाए सिवाय जिल्लत और रुसवाई के कुछ हाथ ना आए। अगर सच्चाई और हकीकत जानना चाहो तो मैं अब तक तुमको उस्मान की मौत का जिम्मेदार जानता हूं, इसलिए कि तुम ही उसके मुशाविर हो, यार हो, हमराज थे, बस। اس بیچارے بڈھے نے تمام امور میں صرف تم پہ اعتماد کر رکھا تھا۔

0: और तुम मुगैरा। मैं हमेशा तुम्हें चाहता था और दोस्ती का दम भरता था, इसलिए कि तुम अपने औकात जानते थे। न तुम बहादुरी का दावा करते थे और न तो तुम्हें अपनी दूरंदेशी पर फख्र था, फकत मेरी बनिस्बत अपनी वफादारी पर तुम्हें नाज था। और बस यही एक तुम्हारा इम्तियाज है, वरना मुझे तुम जैसे चापलूस, डरपोक और बेकार इंसान से कोई उम्मीद नहीं है। और अब क्या देखता हूं कि तुम जैसे बेमसरफ इंसान ने भी मुझसे मीरास तलब कर ली है। और तुमको मैं हमेशा जानता था कि तुम्हारे पीछे एक चापलूस और दगाबाज का चेहरा पोशीदा है, कि अगर मौका मिल जाए और मुझ तक रसाई हो जाए तो पीछे से मेरी कमर में खंजर भोंक देगा। हाँ, इसमें शक नहीं कि तुम जंग फतह तदबीर शैतनत में मरवान से बेहतर नहीं हो। सरदार, शायद इराक पर जो लश्कर कशी की थी वो भूल गए कि जब तक किसी से तुम्हारा सामना नहीं हुआ, एक फातह सरदार की तरह आतश जनी और गारतगरी शुरू कर दी, लोगों के घरों को जलाते हुए आगे बढ़ गए। और जब हुजरब ने अदी के चंद सरबाजों से सामना हुआ तो शेर के सामने लोमड़ी की तरह हो गए और रात का सन्नाटा होते ही भाग खड़े हुए और आके मेरे खेमे के पीछे छुप गए। माजी में तुमने कौन से कारनामे करके दिखा दिए जो अब मुस्तकबिल में अपने हिस्से की बात कर रहे हो? कहो तो अभी बुसर बिन अताद को हुक्म दूं कि बिल्कुल एक चिड़ेते की तरह तुम्हारा सर उड़ा दे। बल्कि तुम चारों का ये भी सोचा था या नहीं? समझते हो कि मैं तुम्हें आजाद कर दूंगा? मुझे अब तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। ऐसा काम करूंगा कि तुम लोगों का नाम सफ़े हस्ती से मिट जाए।
1: हाँ, कर सकते हो, लेकिन हमारे बगैर हसन इब्ने अली का क्या करोगे?
0: हसन इब्ने अली जैसा एक ना तजुर्बेकार जवान मेरा मुकाबला कर सकता है?
1: हाँ, यकीनन कर सकता है। तुमने अभी उसे समझा ही कहाँ है।
0: तो क्या तुम उसे अली समझते हो?
1: अली नहीं है, मगर वही शमशीर व तदबीर है। लेकिन अब ऐसे हालात पैदा हो चुके हैं कि अगर तुम इससे सही फायदा उठाना चाहो तो हम अली को अपने रास्ते से हटा सकते हैं।
0: अली को?
1: हाँ, हमारे लिए वो अली ही है। अगर तुम इन शरायत में कामयाब होना चाहते हो तो तुम्हें हमारी वफादारी दरकार होगी।
0: वफादारी?
1: तुम हमारी वफादारी में शक नहीं कर सकते? हाँ, महंगी जरूर है।
0: मुझे तुम जैसे नौकरों की जरूरत नहीं है।
1: हम तुम्हारे नौकर नहीं हैं। तुम्हारे हम पैमान हैं।
0: अगर ऐसी बात है तो मेरे लिए शाम काफी है। तुम जैसे नमक हरामों से कोई सौदा नहीं करूंगा।
1: तुम्हारे जानशीन का क्या होगा? यजीद का क्या करोगे तुम? क्या वो तुम्हारी नजर में हर चीज से ज्यादा अजीज नहीं है? कुछ सोचा है तुमने कि तुम्हारा ये नूर नजर अपने इन चचाओं के बगैर उम्र खिलाफत कैसे अंजाम देगा?
0: कैसे मालूम कि तुम लोग मुझसे पहले वासिले जहन्नम ना हो गए?
1: और तुम्हें कैसे मालूम कि तुम हमसे पहले उसी जहन्नम में अपने बाप दादाओं से ना जा मिलो?
0: क्या चाहिए तुम्हें?
1: मेरी जवानी के प्यारे दोस्त, तुमसे और मुझसे बईद है कि हम दो छोटी बच्चियों की मानिंद इतना जल्दी एक दूसरे से नाराज हो जाएं। मैंने तुमसे कुछ ज्यादा तो नहीं मांग लिया?
0: क्या चाहिए?
2: मैं अमीर से यह चाहूंगा कि मुझे मदीने के उमूर का जिम्मेदार बना दिया जाए।
3: मेरी हमेशा से यह आरज़ू थी कि मैं कूफे का हाकिम बन जाऊं। अगर तमाम इस्लामी ममालिक की खिलाफत अमीर को नसीब हो जाए तो मैं अमीर से यह दरख्वास्त करूंगा कि शाम के उमूर मेरे हवाले कर दिए जाए।
0: और तुम?
1: फिलहाल मैं कुछ नहीं चाहता, मैं सिर्फ अमीरुल मोमिनीन की सलामती चाहता हूँ।

0: मैं तुम सबको जानता हूं, जंगजू और जंग देखे हुए लोग हो।
1: अलैकुम सलाम।
0: मैं चाहता हूं कि सिपाह की तरबियत तुम लोगों के हवाले हो। अब आप लोग कोशिश करें कि कोई कसर बाकी न रह जाए।
1: तुम यहीं रुको।
2: सलाम उस्ताद।
1: अशस, क्या खबर रखते हो?
3: अबा मोहम्मद दमिश्क के लिए कासिद रवाना करना चाहते हैं।
4: ऐसा ना हो कि माविया से दोस्ती करना चाहते हो।
1: हमें उनके पैगाम का पता चलना चाहिए। ए, चलो मेरे साथ आओ। तुम भी आओ, तुम भी आओ।
5: तुम दोनों मेरे साथ आओ, तुम भी आओ।
1: आ जाए।
6: कहाँ?
1: अबा मोहम्मद की जियारत के लिए।
6: अबा मोहम्मद?
1: मगर नहीं कहा था कि जियारत करनी है।

0: वो देखो उधर।
1: तो क्यों जा रहा है? दमिश्क का रास्ता तो इस तरफ से है।
2: शायद रास्ता भूल गया हो। चलें उसके पीछे चलें।
1: ठहरो, हम दो आदमी इसके पीछे जाते हैं और तुम दोनों छोटे रास्ते से जाओ। अगर हमने इसको पकड़ लिया तो तुमसे आके मिल जाएंगे, और अगर तुम इसको पकड़ने में कामयाब हो जाओ तो हमारा इंतजार करना। है चलो।
3: वो रहा, तुम उस तरफ से जाओ, मैं इस तरफ से आता हूँ।

0: मैं तुम लोगों से दोबारा पूछता हूं, क्यों मेरा पीछा कर रहे थे?
1: ठहरो, बताता हूं।
0: यही तो मैं पूछ रहा हूं, बताओ।
1: हम जानना चाहते हैं जो खत तुम ले जा रहे हो उसमें क्या लिखा है।
0: कौन जानना चाहता है? हाँ? सुनो, मेरे पास वक्त नहीं है। दमिश्क का रास्ता बहुत लंबा है। इस मर्तबा अगर मैं चला गया तो याद रखो, किसी भी कीमत पर वापस नहीं आऊंगा। चला जाऊं?
1: ठहरो, बताता हूँ। शम इब्ने जी जोशन, अशअस इब्ने कैस और उरवत इब्ने उमैर।
0: मुझे याद रहेगा, शिमर इब्ने जिल जोशन, अशस इब्ने कैस और उरवत इब्ने उमेर।
1: हम क्या करें, हमारा क्या बनेगा?
0: मैं तो भूल गया।
1: चलो आ जाओ, हमने उसे पकड़ लिया, उसे पकड़ लिया, आ जाओ।
0: ये हारून था।
2: नहीं, शाब था।

0: जाओ उधर खड़े हो जाओ, चेहरे से निकाब हटाओ और अपना नाम बताओ।
1: कासिम इब्ने जाबिर,
2: किस कबीले से हो?
1: कबीले फहस से।
2: अली और उसके खानदान के बारे में क्या जानते हो?
1: जानता हूं वह अमीर उलमोमिन माविया के दुश्मन है।
2: बनी हाशिम को पहचानते हो?
1: सोने के सिक्कों की आवाजों को पहचानता हूं।
2: इसकी खबर है कि अली मारा जा चुका है और हसन इब्ने अली उसकी जगह पर बैठ गया है।
1: जानता हूं।
2: अपने कबीले वापस जा सकते हो?
1: आप जब भी चाहें।
2: तुम अपने कबीले जाओगे और अपने सरदारों को हसन इब्ने अली की मदद करने से रोकोगे और उनको हमारी तरफ से यह वादा दोगे कि अगर वो लोग अमीरुल मोमिनीन माविया के लश्कर से जा मिलें तो उनको गारतगरी के हक के अलावा हर एक 1,000 सिक्के मिलेंगे।
1: इताद सरदार। सरदार अगर वो ज्यादा मांगे तो?
2: तो और ज्यादा, उनको और ज्यादा का वादा दो।
1: सच्चा या झूठा वादा, मेरे लिए दोनों वादों में कोई फर्क नहीं है।
2: नहीं, सच्चा वादा है, मिलेगा, लेकिन होशियार रहो कि ज्यादा सखी भी मत हो जाना। कुछ जंग से पहले देंगे, कुछ जंग के दौरान और बाकी जंग खत्म होने के बाद। हर माह तुमको 300 दमिश्की सुनहरे सिक्के मिलेंगे। राजी हो?
1: मेरी जान की कीमत तो 10 सिक्कों से ज्यादा नहीं है। 300 सिक्कों के लिए तो मैं 30 मरतबा मर के जिंदा हो सकता हूँ।
2: और अगर हमारे साथ मिलकर लड़ने पर तैयार ना हो तो कम से कम ये काम करो कि वो बेतरफ रहें और हसन इब्ने अली का साथ न दें।

0: कल सुबह सवेरे जंग के लिए निकलना है।
1: इताअत।
2: चेहरे से निकाब हटा, अपना नाम बता।
0: इब्ने सायद, किस कबीले से हो? बनी सईद। अपने कबीले वापस जा सकते हो? जी हाँ।

0: हाँ कासिद नहीं है, ये तो मुसाफिर लग रहा है।
1: ताज्जुब है, न इसके पास ज्यादा राह है, न बीवी बच्चे हैं, न कोई साथी, अकेला चला आ रहा है।
0: तुम भी तो तन्हा थे।
1: मैं तो कासिद था।
0: वो देखो ये कोई आ रहा है।
1: तीसरा आदमी भी रास्ते में है। सुनो कुछ करो।
0: मैं यकीन से कह सकता हूँ ये मुसाफिर नहीं है, जरूर कोई बात है।
2: इनका पीछा करना चाहिए। उठो चलें।
1: मैं तुम्हारे साथ नहीं जा सकता। मुझे अबा मोहम्मद का नामा दमिश्क पहुंचाना है।
0: मैं ले जाऊंगा, अगर तुम दमिश्क गए तो पकड़े जाओगे।
1: नहीं, मैं खुद जाऊंगा। नामा मेरे सुपुर्द किया गया है।
3: फिर दोबारा वही मुसीबत होगी। बाजार में बर्दा फरोश तुम्हें देख लेगा, कौड़े पड़ेंगे और तुम्हारी गर्दन उड़ा दी जाएगी।
1: नहीं मालूम, हमेशा बर्दा फरोश दरवाजे पर थोड़ी खड़ा रहता है। इसके अलावा अब तक मुझे कौन याद रखेगा। चलो फिर कूफे में मुलाकात होगी।

0: सलाम अलैकुम, बड़ी जल्दी में हो।
1: वापस कबीले जा रहा हूँ, तुम कहाँ?
0: माविया के लिए पैगाम लेकर जा रहा हूँ।
1: खुदा हाफिज।
0: यामानिल्ला।

0: निकाह बताओ, अपने नाम बताओ।
1: वली इब्न अम्र,
2: कैस इब्न मोहम्मद,
3: बुश इब्न मंसूर,
4: माज,
5: हारून।
0: किसको अपना अमीर अल मोमिनीन मानते हो?
1: माविये,
2: माविया इब्न अबी सुफयान,
4: माविये।
6: जो भी माल दे।
0: पैसों की किसने बात की? तुम्हारा नाम क्या है?
3: बुश इब्न मंसूर।
0: इन लोगों के सरदार तुम हो, अब अपने सरदार को अच्छी तरह देख लो और पहचान लो। अब से तुम पांचों हमेशा हर जगह एक साथ रहोगे। यहां से निकलने के लिए तुम लोगों को तलवारें, घोड़े और ज्यादा सफर दिया जाएगा। अब तुम लोग जल्द से जल्द कूफा, मदीना और बसरा के देहातों तक पहुंच जाओ। जहां कहीं भी तुम्हारे कदम पहुंचे, तुम अपने आप को अमीरुल मोमिनीन हसन इब्न अली का नुमाइंदा बताना और जितना भी हो सके उन लोगों से लगान और भत्ता वसूल करने की कोशिश करना। अगर कोई ना दे या मुखालिफत करे तो उसे बेफिक्र होकर हसन इब्न अली का नाम लेकर कत्ल कर देना और उसका मालो मता और घर बार सबको जलाकर खाक कर देना और माल गनीमत को आपस में बांट लेना। हुजर इब्न मंसूर तुम सबका सरदार है, उसका हुक्म मेरा हुक्म है। मुझसे किस तरह राबिता किया जाए मैं तुम्हें बता दूंगा। हाँ, अब रहा तुम लोगों की तनख्वाह का। तुम्हारी तनख्वाह हर माह 100 दमिश्की सोने के सिक्के हैं। राजी हो?
6: जी सरदार।
0: अब जाओ इस तरफ से। इब्ने मंसूर, तुम बाहर मेरा इंतजार करो।